तो श्रोताओ, इसी गीत के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त सुकृति को इजाजत दीजिए। आप सबसे कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करते हैं हिमाचल की और करवाते हैं आपको सैर हिमाचल के कुछ ऐसे स्थानों की और बताते हैं, नई जानकारियां देते हैं। साथ में आप हमारे जो हमीरपुर ज़िला से जो कुछ खास खबरें होती हैं वो भी आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानकारी आपको देंगे तीर्थन घाटी के जिब्भी की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के तीर्थन घाटी में स्थित जिब्भी एक छिपा हुआ प्राकृतिक स्वर्ग है। ये भीड़ भाड़ से दूर देवदार के जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सी जगह जो हैं वो फेमस हैं। आप अगर कभी जाएं तो ज़रूर कुल्लू जाएं तो ज़रूर जिब्भी जाएं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिब्भी वाटरफॉल की, जो कि मुख्य बाज़ार से लगभग 15 मिनट की पैदल दूरी पर घने जंगल के बीच छिपा हुआ एक बेहद शांत और खूबसूरत झरना है। यहाँ नदी पार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे पुल बने हुए हैं जो इस जगह को और आकर्षक बनाते हैं। बात करें अगर हम जिब्भी वाटरफॉल से थोड़ी दूरी पर, जिसे मिनी थाईलैंड कहा जाता है, जी हाँ थोड़ी दूरी पर ही मौजूद है ये जगह और स्थानीय रूप से इसे जिब्भी आइलैंड या मिनी थाईलैंड भी कहा जाता है। यहाँ दो चट्टानों के बीच साफ नीले पानी का कुंड है जिसके चारों ओर हरे भरे पहाड़ हैं। जलोरी पास की बात करें तो जिब्भी से लगभग 12 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा शानदार हिमालयी नज़ारे पेश करता है। यहाँ महाकाली का माता का एक प्राचीन मंदिर है और ये ट्रैकिंग के लिए भी एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। बात करें अगर सिरोलसर झील की तो जलोरी पास से लगभग 5 किलोमीटर की आसान ट्रैकिंग से फॉरेस्ट हाइक है इस करके आप जो है वो इस झील तक पहुंच सकते हैं। ये झील घने देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है और इसके पास ही माता बूढ़ी नागिन का एक छोटा सा और पवित्र मंदिर भी है। रघुपुर गढ़ फोर्ट की बात करें तो जरोड़ी पास से ही एक और ट्रैक आपको रघुपुर गढ़ किले तक ले जाता है और ये जगह अपने अद्भुत नज़ारों के लिए जानी जाती है, जहां से हिमालय की 100 से अधिक चोटियों को देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों के सामने तो वो नज़ारे आ रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें दिखती होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आंखों के सामने भी वो ठंडे ठंडे पहाड़ों के नज़ारे आ रहे होंगे कि किस तरह से ये जगह दिखती होगी। तो एक बार यहाँ जाकर जो है वो एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना चाहिए। बात करें अगर हम चेहनी कोठी की तो ये 17वीं सदी का जो है वो एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है और ये पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला, हिमाचली आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है और पूरे हिमाचल में सबसे ऊंची प्राचीन इमारतों में से एक है। बाहु गांव या और बाहु लेक की बात करें तो जिब्भी से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत परिवेश के लिए जाना जाता है। यहां की बाहु लेक एक बेहतरीन सनसेट पॉइंट है। तो ज़रूर जाइए और ज़रूर लीजिए नज़ारे जिब्भी के तीर्थन वैली के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी आप जिब्भी पहुंचेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने किसी परिकथा में कदम रख दिया है और तीर्थन घाटी में बसा ये छोटा सा हिमालयी गांव मनाली और शिमला जैसे भीड़भाड़ वाले जो पर्यटन स्थलों से जो है वो बिल्कुल अलग है। लकड़ी के कॉटेज, बहती नदियां, घने चीड़ के जंगल और धुंध से ढके पहाड़ों के साथ जिब्भी को अक्सर जो है वो मिनी थाईलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण शांत और उष्ण कटिबंधीय जैसा है। बेशक यहाँ समुद्र तट नहीं है पर फिर भी यहाँ पर जो है वो

इसे जो है वो मिनी थाईलैंड कहा जाता है। तो ये तो थी जानकारी तीर्थन वैली के जिब्भी की, और अब प्रोग्राम में सुनते हैं ये लोकगीत।

आप इस वक्त जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम लोक संसार। और अब हम बात करेंगे हमीरपुर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना की। देश भर में हो रही जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है और इसमें ऑनलाइन माध्यम से स्वयं की जानकारी अपलोड करने का भी विकल्प दिया गया है। स्वयं ऑनलाइन अपलोडिंग के स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पहली से 15 जून तक खुला रहेगा। और नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने सोमवार को इस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड करके स्वगणना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नगर निगम हमीरपुर में भी पहली जून से स्वगणना का कार्य शुरू हो गया है जो 15 जून तक चलेगा। इसमें लोग स्वगणना पोर्टल पर पूछे गए सवालों को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। अपलोडिंग के बाद उन्हें एक आईडी नंबर मिलेगा। सभी लोग स्वगणना पोर्टल पर उपलब्ध स्वगणना के विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे जनगणना का कार्य तेजी से पूरा होगा और लोग स्वयं अपने परिवार से संबंधित सही जानकारी अपलोड कर सकेंगे। जनगणना की प्रक्रिया के तहत ही 16 जून से 15 जुलाई तक मकानों का सूचीकरण एवं मकान गणना की जाएगी और इस प्रक्रिया को पूरा करवाने में भी सभी लोग प्रगणकों का पूर्ण सहयोग करें। तो देखिए, आप भी अपना जो है वो ये स्वयं जनगणना पोर्टल से जो है वो अपना डेटा जो है वो अपलोड कर सकते हैं और इससे आसानी भी होगी जनगणना करने वालों को और साथ ही में आप एक मतलब कि सही तरीके से जो है वो अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। तो जो हमारे युवा साथी हैं वो तो अपने घरों में जो है या फिर जो बच्चे जो हैं वो भी अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। अगर किसी को पता नहीं चलता है तो स्वगणना पोर्टल पर जाकर जो है वो गणना कर सकते हैं, अपने आप की गणना कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम टीकाकरण अभियान की, तो जिले में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए चलाए जा रहे HPV टीकाकरण अभियान को अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अभियान 30 मई को समाप्त हो गया था, लेकिन अब पात्र किशोरियां अगस्त तक निःशुल्क टीका लगवा सकेंगी। जिले में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 2967 किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1442 किशोरियां टीका लगवा चुकी हैं, जो कुल लक्ष्य का 48.6% है। 27 मार्च से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना और समय रहते सुरक्षा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को समय रहते टीकाकरण करवाएं ताकि उन्हें बीमारी से सुरक्षा मिल सके। वहीं बात करें अगर हम रोजगार की, तो रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 11 जून को सुबह 10 बजे लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 445 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बद्दी की एक कंपनी मशीन ऑपरेटर प्रोडक्शन एवं क्वालिटी ट्रेनी के 300 पद भरेगी और इन पदों के लिए 12वीं पास, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और MMV ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा BTech डिग्री धारक 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। एक अन्य कंपनी टेक्निकल एसोसिएट ऑपरेटिंग इंजीनियर असेंबली और वेल्डिंग के 45 पदों के लिए भर्ती करेगी। इन पदों के लिए 12वीं पास, ITI डिप्लोमा धारक और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त महिला एवं पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा हमीरपुर की एक कंपनी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी और इन पदों के लिए 19 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। 10वीं फेल, 10वीं पास या इससे अधिक शैक्षणिक
योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम तक होना चाहिए। जिला रोजगार अधिकारी ने युवाओं से अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आग्रह किया है। वहीं नगर निगम हमीरपुर की बात करें तो नगर निगम हमीरपुर को जल्द ही आधुनिक कार्यालय भवन मिलने जा रहा है। टाउन हॉल के समीप खाली पड़ी भूमि पर नगर निगम एक नए कार्यालय का निर्माण शुरू हो गया है और लोक निर्माण विभाग का दावा है कि करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये भवन 18 माह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। प्रस्तावित 3 मंजिला भवन में नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग अलग कार्यालय कक्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के लिए भी पृथक कार्यालयों की व्यवस्था होगी। भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा ताकि निगम के प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। भवन के भूतल पर पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी जबकि ऊपरी मंजिलों में कार्यालय और बैठक कक्ष बनाए जाएंगे। आम लोगों और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन में 2 लिफ्टें भी स्थापित की जाएंगी जिससे सभी मंजिलों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। तो ये तो थी कुछ खास खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई हमीरपुर की, और अब पहुँचा रहे हैं एक गीत।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ आज का लोक संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त सुकृति को इजाजत दीजिए। फिर यूं ही चलते चलते किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संसार। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके तुरंत बाद मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन

0: दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
4: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
5: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
3: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
6: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को

0: 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ATS ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। ATS ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला

हिमाचल डायरी के आज के संक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के संक में मैं हूं सुकृति आप सबके साथ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे माननीय सांसद की। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हिमाचल प्रवास पर रहेंगे और वे कल सुबह 8 बजे पुनर्स्थापित कांगड़ा नैरो गेज रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे और ये शुभारंभ वो कांगड़ा रेलवे स्टेशन से करेंगे।

अब बात करते हैं खेत बचाओ अभियान की। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए खेत बचाओ अभियान के तहत देश के साथ प्रदेश के किसानों को आधुनिक और सही तरीके से खेती करने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। इस विशेष अभियान के तहत 1 से लेकर 30 जून तक कृषि और निदेशालय खुम्ब अनुसंधान के वैज्ञानिक लगातार फील्ड में रहेंगे। वैज्ञानिक खुद खेतों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से बचाना है। अक्सर बाजार में मिलने वाले नकली कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स के कारण किसानों की

फसल बर्बाद हो जाती है और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। अभियान के दौरान वैज्ञानिक किसानों को असली और नकली पेस्टिसाइड्स की पहचान करने के व्यवहारिक टिप्स देंगे। आईआईटी मंडी की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी में 3 से 6 जून तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मन मस्तिष्क एवं चेतना सम्मेलन होगा। इसमें देश विदेश के जो वैज्ञानिक शोधकर्ता शिक्षाविद विद्यार्थी एक मंच पर जुटेंगे। सम्मेलन में चेतना अध्ययन, तंत्रिका विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, योग, ध्यान, आयुर्वेद, संस्कृत अध्ययन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। बात करें अगर इग्नू कोर्सेज की तो प्रदेश में अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटरों में सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये कोर्स उन ग्रेजुएट युवाओं के लिए खास है जो जेल, बाल सुधार गृह, फैमिली कोर्ट और एनजीओ में सोशल वर्कर के रूप में काम करना चाहते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स की अधिकतम अवधि 2 साल है। कोर्स की फीस करीब 1600 रुपये होगी। इसमें दाखिले के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। पढ़ाई के दौरान छात्रों को 4 थ्योरी पेपर पास करने होंगे और एक फील्ड वर्क आधारित प्रोजेक्ट भी जो है वो तैयार करना होगा। सभी पेपर और प्रोजेक्ट पूरा करने पर इग्नू की ओर से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोर्स हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों में उपलब्ध है और इस कोर्स का उद्देश्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के काम करने के लिए प्रशिक्षित पैरा सोशल वर्कर्स तैयार करना है। बात करें अगर परीक्षा केंद्रों की तो बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों के अध्याय 8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2 में संशोधन किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों, हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। तो श्रोताओं, ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर सुबह के 8:35 हो चुके हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: चल गया।
1: आज अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और विविध भारती की ओर से कहते हैं हैप्पी बर्थडे। आर राजकुमार फिल्म का गाना नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में, मयूर पुरी के बोल संगीत प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना दबंग फिल्म का गाना राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में फैज अनवर के बोल संगीत है साजिद वाजिद का। वाकई में सोनाक्षी सिन्हा मस्त मस्त दो नैन।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दबंग 2। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजों में, इरफान कमाल के बोल हैं, संगीत है साजिद वाजिद का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: जी हाँ दोस्तों, विविध भारती का एक बहुत ही जाना माना कार्यक्रम है जिन्हें लोग पसंद करते हैं, सखी सहेली कार्यक्रम, जिसकी आज वर्षगांठ है और विशेष कार्यक्रम आप 3 बजे सुनेंगे, ये तो हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ आज सुप्रसिद्ध फिल्मकार मणि रत्नम का भी जन्मदिन है, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तमिल व हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया है। हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो रोजा, बॉम्बे, दिल से, साथिया, युवा, गुरु, इन को हम याद कर सकते हैं। निर्देशन के अलावा उन्होंने लेखन का भी कार्य किया है, संगीत की भी गहरी समझ है। उन्होंने अपनी फिल्मों के किरदारों में संस्कृति और भावनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से उतारा है, तो उन्हें जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देते हैं। और रोजा फिल्म के गाने की एक झलक इस वक्त हम आपको सुनवा देते हैं।

रोजा फिल्म के गाने की ये झलक हमने आपको सुनवाई, मणिरत्नम की फिल्म रोजा, और ये गीत की जो झलक सुनवाई तो शायद सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने घूम गए होंगे। चलिए अब हम चित्रलोक कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। लुटेरा फिल्म का गाना, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए मुंबई एक्सप्रेस फिल्म का गाना सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में, देव कोहली के बोल और संगीत इलैयाराजा का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्रक, वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में स्वानंद किरकिरे के बोल संगीत इलैयाराजा का।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाज़ों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

0: मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव सहायता देगी सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चयन के लिए बढ़ी सरगर्मियां। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा, बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय में शोध क्षेत्र में हुआ बेहतरीन काम। और प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से मिलती रहेगी राहत, मौसम विभाग का 4 और 5 जून को अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे टॉग लेन ट्रस्ट को हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के तहत पढ़ रहे 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये और 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने वंचित और जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना की और कहा कि शिक्षा और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ट्रस्ट के निदेशक थिरचिन ग्यालसेन ने किया। ट्रस्ट सरकार से विश्वविद्यालय के भूमि पट्टे पर देने की मांग कर रहा है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब इन संस्थाओं में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर तैनाती को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: स्पीति ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पदों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। स्पीति ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सिरतुलो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नवनिर्वाचित ब्लॉक समिति सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से चिचम गांव की ब्लॉक समिति सदस्य छिरिंग रोलमा को चेयरमैन पद तथा हुरलिंग गांव के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता महेंद्र को वाइस चेयरमैन पद के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सभी सदस्यों ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर पार्टी हित को प्राथमिकता दी है, जो कि संगठन की एकजुटता को दर्शाता है। इस अवसर पर लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने दूरभाष के माध्यम से दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। स्पीति में इस निर्णय को कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
4: सिरमौर जिला परिषद के लिए मतगणना बीती रात संपन्न हो गई। जिला परिषद के चुनाव परिणामों में 17 में से 13 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजय रहे हैं। कांग्रेस समर्थक सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: जिला परिषद के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर जिला में 17 सीटों में से 13 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट गई है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनाव में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी को सिरमौर जिला में निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेणुका से विधायक विनय कुमार के गृह क्षेत्र के अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र शिलाई में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
4: उधर कांगड़ा जिला परिषद के चुनाव के सभी नतीजे आ जाने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। जिले के कुल 54 वार्डों में से 24 में भाजपा समर्थित, 13 में कांग्रेस समर्थित और 17 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवारों की जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन्हें अपने अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा है कि जिला परिषद वार्ड जरड़ भुट्टी और दाऊगी की मतगणना में कोई भी गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई है। उपायुक्त ने इन दोनों वार्डों में कथित अनियमितताओं की शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायत के संबंध में सभी तथ्यों और परिस्थितियों का विधि सम्मत परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित वार्डों के चुनाव परिणाम विधिवत घोषित किए जा चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में परिणामों के संबंध में कोई भी प्रशासनिक हस्तक्षेप निर्वाचन नियमों के अनुरूप संभव नहीं है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा है कि बीते एक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय में शोध के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है और आधारभूत ढांचे के साथ साथ शोध पत्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है। कुलपति के रूप में अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर महावीर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में विश्वविद्यालय में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के संकेत मिले हैं। महावीर सिंह ने कहा कि उन्होंने कुलपति बनने के एक साल के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। कुलपति ने कहा कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं किया है। प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। इसी दिशा में मंडी जिला में लोगों, खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने और इस पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता गतिविधियां चलाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
7: मंडी में नशे के खिलाफ अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने, युवाओं को नशे में से दूर रखने और जागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर चलाने पर जोर दिया गया। डॉक्टर मदन कुमार ने कहा कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल पुलिस और कानून परिवर्तन एजेंसियों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा युवाओं को खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चिट्टे के कारोबारी की सूचना देने वाले को ₹20,000 का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में जल्द ही नशे के खिलाफ जन जागरूकता के लिए वॉकथॉन आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
4: उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला के सभी लोगों से जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देने और प्रगणकों को सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की है। उपायुक्त ने अधिक से अधिक लोगों से स्वगणना सुविधा का उपयोग कर जनगणना प्रक्रिया को सरल, तेज व प्रभावी बनाने का भी आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया पहली जून से आरंभ हो गई है और इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक नागरिक जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वजनगणना में हिस्सा ले सकते हैं। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में कहा गया है कि आगामी 7 जून तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने और अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई है। विभाग के अनुसार राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा, ओलावृष्टि और अंधड़ जैसी गतिविधियों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। इस बीच आज प्रदेश में सुबह से ही अधिकांश स्थानों पर धूप खिली हुई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने जिला परिषद चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, जिला परिषद में भाजपा का दबदबा, 8 जिलों में बहुमत, 2 में कांग्रेस आगे, 2 में अन्य के हाथ चाबी। पंजाब केसरी के शब्द हैं, चंबा को छोड़ अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 8 जिला परिषदों में खिला कमल, 57 पर कांग्रेस, 144 पर भाजपा व 47 सीटों पर अन्य ने जीत की हासिल। हिमाचल दस्तक के मुताबिक निर्दलीय तय करेंगे जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, के पंत हिमाचल के नए मुख्य सचिव, संजय गुप्ता की तरह अतिरिक्त कार्यभार मिला, विभाग भी संभालेंगे। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, प्रदेश में 3 से 6 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव सहायता देगी सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चयन के लिए बढ़ी सरगर्मियां। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा, बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय में शोध क्षेत्र में हुआ बेहतरीन काम और प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से मिलती रहेगी राहत। मौसम विभाग का 4 और 5 जून को अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
8: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हो चुके हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
9: कब्बन मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
10: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

0: गए हम कहां। 1956
1: में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

शबनम की पहली फिल्म कन्नड़ में थी, पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे। 1986 में फिल्म मौना रागम बनाकर इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि, और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजाने।

1993 में निर्मित थेरुडा थेरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

हालांकि मणिरत्नम ने अपनी सभी फिल्में दिल से ही बनाई हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वही हिट होती है जो पब्लिक के दिल को भा जाए।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी नहीं।

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: श्रोताओ, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज बेहतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लघुवार्ता।

लघु वार्ता कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। श्रोताओं, आज की इस वार्ता का जो विषय है वो है टीबी। हमने आजकल जो है अखबारों में आप भी पढ़ रहे होंगे कि टीबी के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं पर पूरा कॉलेज जो है वो कॉलेज के जो हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो भी टीबी से संक्रमित पाए गए हैं, और यहाँ पे हमारे हमीरपुर के आसपास भी जो है वो ये रोग फैल रहा है। तो इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। बात करें अगर टीबी की, तपेदिक एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये शरीर के अन्य हिस्सों में होती है। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरिया हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जिसके लिए आपको समय से जो है वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। इसके लक्षणों और कारणों को पहचान कर सही समय पर रोकथाम के उपाय अपनाकर हम टीबी से बच सकते हैं। जागरूकता और सतर्कता बीमारी से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत होती है। बात करें अगर टीबी की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे हिंदी में तपेदिक कहते हैं और एक संक्रामक बीमारी होती है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, मगर ये शरीर के अन्य अंगों जैसे किडनी, मस्तिष्क, हड्डियों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। टीबी से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता, छींकता या बात करता है तो उसके बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं। यही बैक्टीरिया दूसरों को संक्रमित करते हैं। अब बात करते हैं कि टीबी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फेफड़ों की टीबी की। ये टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों में होती है। ये सबसे अधिक संक्रामक होती है। इससे फैलने वाले बैक्टीरिया हवा में आसानी से फैलते हैं। फेफड़ों के बाहर की टीबी की बात करें तो ये टीबी फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करती है। इससे लिम्फ नोड्स, हड्डियाँ, गुर्दा, मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, और ये कम संक्रामक होता है मगर गंभीर समस्या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी, इसकी बात करें तो जब टीबी के बैक्टीरिया एंटी टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं तो इसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। इसका इलाज सामान्य टीबी से अधिक कठिन और लंबा होता है और इलाज में लंबा वक्त लगता है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर टीबी, ये एमडीआर टीबी की तुलना में अधिक गंभीर होती है। इसमें बैक्टीरिया कई तरह की एंटी टीबी दवाओं के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होने लगते हैं। इससे इलाज में बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, टीबी का इलाज संभव है अगर हम थोड़ी सी जागरूकता रखें और सतर्कता बरतें तो हम इस बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। अब बात करते हैं टीबी के कारण की। टीबी का कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया संक्रमण होता है, और ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके फेफड़ों और अन्य अंगों को संक्रमित करता है। टीबी संक्रमित व्यक्ति जब खांसता, छींकता या बात करता है तो उसके मुंह और नाक से छोटे छोटे बैक्टीरिया वाले कण हवा में फैलते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन्हें सांस के जरिए अंदर लेता है तो उसे भी टीबी हो जाती है। कई बार ये नॉन कम्युनिकेबल भी होता है और कई बार कम्युनिकेबल भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का टीबी जो है वो उस मरीज को है। कुछ लोग टीबी के संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिनमें कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे एचआईवी संक्रमित लोग, कुपोषण और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले लोग, भीड़भाड़ वाले और अस्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोग, या पुराने या लंबी अवधि से चल रहे स्वास्थ्य रोगी शामिल हैं। ये जो हैं ये टीबी के संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बात करें अगर लक्षणों की,
तो टीबी के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी जुकाम या फेफड़ों की अन्य बीमारियों जैसे लगते हैं, इसलिए इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लगातार 2-3 सप्ताह से अधिक खांसी है तो आपको जो है वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, खांसी का इलाज कभी भी खुद घर पर नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें खांसी होती है या नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम अपना इलाज स्वयं करने लग पड़ते हैं और इसी से जो है बीमारी बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। खांसी, कफ के साथ कभी कभी खून आना, बुखार शाम को बढ़ जाना, रात में पसीना आना, वज़न में कमी होना, भूख कम लगना, लगातार थकान या कमज़ोरी महसूस होना, सीने में दर्द होना या सांस में तकलीफ़ होना, ये सभी जो हैं वो टीबी के लक्षण हैं।

बात करें प्रिवेंशन की तो टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर इसे आसानी से रोक सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, यानी टीबी संक्रमित व्यक्ति से निकट संपर्क से बचें, खासकर जब वो खांस रहे हों या छींक रहे हों। खांसते या छींकते समय मुंह को और नाक को ढकें, यानी रुमाल या टिश्यू या कोहनी के अंदर से मुंह और नाक को ज़रूर ढकें ताकि बैक्टीरिया हवा में न फैल पाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, यानी मास्क पहनना संक्रमण के जोखिम को कम करता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर पहने। टीकाकरण यानी बच्चों को BCG का टीका लगवाना ज़रूरी है, जो टीबी के बचाव में मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक आहार लें, यानी मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है। सही समय पर जांच और इलाज शुरू करें, यानी यदि टीबी के लक्षण दिखें तो तुरंत जो है वो अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी जांच करवाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी जाँच करवाएँ। टीबी का इलाज सही और पूरी अवधि तक दवाइयां लेने से ही संभव हो पाता है।

दवाइयों का सही सेवन भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक फेज़ इंटेंसिव फेज़ यानी ये चरण लगभग 2 महीने तक चलता है, जिसमें 4 एंटी टीबी दवाई दी जाती है, और जबकि सुधार फेज़ कंटिन्यूशन फेज़ और ये जो है वो इसके बाद लगभग 4 महीने तक जो है वो 2 दवाएं दी जाती हैं। और दवाओं का जो है वो सही सेवन भी बहुत ज़रूरी है। टीबी के इलाज में दवाओं को डॉक्टर के निर्देशानुसार नियमित और पूरे कोर्स के दौरान लेना ज़रूरी होता है। अधूरा इलाज बीमारी को बढ़ाता है, दवाओं के प्रति प्रतिरोध पैदा कर सकता है। जब टीबी के बैक्टीरिया सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, तब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट या एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता है। इनका इलाज विशेषकर विशेष प्रकार की दवाइयों और लंबे समय तक किया जाता है, जिसकी देखरेख जो है वो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं वो अच्छे से करते हैं। इलाज के दौरान रोग की प्रगति का पता लगाने के लिए नियमित थूक टेस्ट और एक्सरे ज़रूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि इलाज जो है वो सही दिशा में चल रहा है या नहीं। और पौष्टिक आहार की बात करें तो पौष्टिक आहार यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए संतुलित और पोषण युक्त आहार लें। पर्याप्त आराम यानी पूरी नींद और आराम से शरीर ठीक होने में जो है वो मदद मिलती है। समय पर जाँच बेहद ज़रूरी है, और समय पर जांच ही आपको इस बीमारी से बचा सकती है। टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है, ये ज़रूर याद रखें। अगर समय पर इसके लक्षणों को पहचान निदान के साथ इलाज शुरू कर दिया जाए तो ये नियंत्रित हो सकती है और आप ठीक हो सकते हैं। टीबी से लड़ने के लिए जागरूकता और सतर्कता ज़रूरी है, और सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और अच्छी कीमत में नियमित जांच इस बीमारी को जो है वो खत्म कर सकती है। तो इसी के साथ ही आज का ये लघु वार्ता कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:15 हो चुके हैं, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झूमते तराने।

झूमते तराने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर्ज फिल्म के किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ।

समाधि फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम झूमते तराने। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है द डर्टी पिक्चर फिल्म से और इसे गाया है बप्पी लाहड़ी और श्रेया घोषाल ने।

रेस टू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शालमली खोलगड़े और बेनी दयाल ने इस गीत को गाया था। झूमते तराने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फैंटम फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओ, प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं श्री राम और श्रेया घोषाल का गाया खिलाड़ी 786 फिल्म का ये गीत। संगीत है हिमेश रेशमिया का और शब्द रचना है समीर अंजान की।

0: इसी के गीत के साथ आज का झूमते तराने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:45 हो चुके हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: चल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर 10:46 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने आले हरे सारे श्रोतियां दा स्वागत आ अज के इस कार्यक्रम च। कने अज एक कार्यक्रम तुहां सुनना मेरे यानी सुकृति सौगी। तो चला करें अज के इस कार्यक्रम री शुरुआत सरताज सिंह होर गाए रे इस लोक गीता कन्ने।

आकाशवाणी राय हमीरपुर केंद्र कने इस वक्त तुहे सुनी कर दे कार्यक्रम लोक रंग। भई ठंडी हवा ताली जे चलाई अजकला ताली ता दिला जो शांति पई आई, क्योंकि गर्मिया रे मौसम च संजा जी या ताली जी ठंडी ठंडी हवा चलाई या ता मौसम थोड़ा जहा ठंडा हो रहा हो तो एक राहत रा अनुभव हुआ। कने दिखा पई पहाड़ा च जे आ से ता गर्मिया रा मौसम जे आ जरा कर बरखा होई नहीं कि फेरी ठंड होई आई है ना, तो इसरा अपना एक आनंद आ। कार्यक्रम रा हुण तुहां जो अगला लोक गीत अहां सुनाणा जसवंत कौर और गायरा।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

ਇਸੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਸੌਗੀ ਅੱਜ ਕਾ ਲੋਕ ਰੰਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰਾਮ ਰਾਮ। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार वंचित और बेसहारा बच्चों की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे टोंगलैंड ट्रस्ट को हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट के तहत पढ़ रहे 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये और 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2,500 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ट्रस्ट के निदेशक थिरचिन ग्यालसेन ने किया। ट्रस्ट सरकार से विद्यालय के लिए भूमि पट्टे पर देने की मांग कर रहा है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब इन संस्थाओं में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर तैनाती को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिरमौर जिला परिषद के लिए मतगणना बीती देर रात संपन्न हो गई। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता के अनुसार जिला परिषद के चुनाव परिणामों में 17 में से 13 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजय रहे हैं। कांग्रेस समर्थक सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कांगड़ा जिला परिषद के चुनाव के सभी नतीजे आ जाने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। जिले के कुल 54 वार्डों में से 24 में भाजपा समर्थित, 13 में कांग्रेस समर्थित और 17 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवारों की जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन्हें अपने अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा है कि जिला परिषद वार्ड जर्रभुट्टी और धाउगी की मतगणना में कोई भी गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई है। उपायुक्त ने इन दोनों वार्डों में कथित अनियमितताओं की शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायत के संबंध में सभी तथ्यों और परिस्थितियों का विधिसम्मत परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित वार्डों के चुनाव परिणाम विधिवत घोषित किए जा चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में परिणामों के संबंध में कोई भी प्रशासनिक हस्तक्षेप निर्वाचन नियमों के अनुरूप संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा है कि बीते 1 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय में शोध के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है और आधारभूत ढांचे के साथ साथ शोध पत्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है। कुलपति के रूप में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर महावीर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में विश्वविद्यालय में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के संकेत मिले हैं। महावीर सिंह ने कहा कि उन्होंने कुलपति बनने के 1 साल के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है। कुलपति ने कहा कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं किया है।
1: हमारे पिछले मेरे 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन 600 शोध पत्र पब्लिश हुए हैं, जो कि हाई इंपैक्ट फैक्टर में, क्योंकि मैंने सारे फैकल्टी को भी इनकरेज किया कि अगर विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल पटल पर आना है तो शोध पत्र जो है हाई क्वालिटी के हों।

0: चाहिए, लोकल जर्नल में नहीं छपने चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर पब्लिकेशन करने तो हाई इंपैक्ट फैक्टर में डालना पड़ेगा।
1: डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के 5 वर्तमान व पूर्व विद्यार्थियों का जनजातीय गरिमा उत्सव के लिए चयन हुआ है। ये विद्यार्थी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रस्तावित संवाद में हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन विद्यार्थियों में अभिषेक नेगी, ज्योति चौधरी, सुमन बोझ, सुदर्शना और मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं। ये विद्यार्थी जनजातीय समुदाय के उन प्रतिभाशाली युवाओं में से हैं जिन्होंने नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का लाभ लिया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला के सभी लोगों से जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देने और प्रगणकों को सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की है। उपायुक्त ने अधिक से अधिक लोगों से स्वगणना सुविधा का उपयोग कर जनगणना प्रक्रिया को सरल, तेज व प्रभावी बनाने का भी आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 जून से आरंभ हो गई है और इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 से 15 जून तक नागरिक जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्व जनगणना में हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 11:05 हो चुके हैं और अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग दरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में। ये गीत उन्हीं के एल्बम से अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइंस, इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

गुस्ताख दिल ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज़ में अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: श्रोताओ, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत हैं कार्यक्रम देवधरा के गीत।

देवधरा के गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए श्रोताओं, करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस लोकगीत के साथ।

देवधरा के गीत कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं गिरधारी लाल वर्मा द्वारा गाया ये लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दिन के 12:10 हुए हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम देवधरा के गीत। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुसुम धीमान का गाया ये लोकगीत।

प्यार चंद वर्मा द्वारा गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांति बिष्ट और ज्वाला प्रसाद द्वारा गाया ये लोकगीत।

0: श्रोता और लहरू राम सांख्यान द्वारा गाए इसी लोकगीत के साथ आज का देवधरा के गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देवधरा के गीत। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 12:30 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। तो चलिए करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत केसरी फिल्म के इस गीत के साथ। गाया है इसे बी प्राक ने।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं क्रांति फिल्म से ये गीत। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:44 हुए हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैनिकों के लिए। प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गीत। गाया है इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

जी बिल्कुल, सावन का महीना तो नहीं है, पर ये गीत जो है वो एकदम हमें सावन की तरफ ले जाता है। आने वाला ही है थोड़े टाइम बाद सावन का महीना। बहरहाल, मिलन फिल्म का ये गीत था और गाया था इस गीत को मुकेश और लता मंगेशकर ने। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से, और अगली प्रस्तुति है कार्यक्रम में बुढ़ा मिल गया फिल्म से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

खुशरोतोसी गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त सुकृति को इजाज़त दीजिए। फिर यूं ही चलते चलते किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है, जैसे कि हमेशा पहुंचती है। और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुन कर वहाँ लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में यूं खिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी, जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी, सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

0: आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफ़ी डिटेल्स हमें मिल गए। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आँखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है, ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज़्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है, और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में, नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश के बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है, चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफ़र में हूँ तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जब भी खुशियाँ आती है तो जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज़ नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहाँ यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताज़ा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही ज़ोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी ज़रूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत ज़रूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज़ पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, ज़माने में गुलमोहर की छाँव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाज़ार है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज़, हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सब की आवाज़ें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई, और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं, और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल, आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन ज़रूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे ये कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की ज़रूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये ज़रूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फूलों के बाज़ार का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाज़ार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए, गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है, देता है, तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी हमारे अजमेर ज़िले के पुष्कर में होती है, जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर सिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण हैं, और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है, और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है, यहाँ पर उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं, और नवरात्रि, गणेश जी के आगमन के समय हर त्यौहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है, और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं, और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम ज़रूर है, इसका रेड ज़रूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ वही है जो कम दिखाई देती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधुमालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह, और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं, यहाँ पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ ज़रूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में है। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफ़ी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते

हैं एक और कि विभिन्न फूलों की फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताज़ा कर देते हैं और आँखों को भी तरावट देते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, ज़रूर मुझे लिखिए।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है। सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ उमेश शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज़्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफ़ी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफ़ी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज़ कर सके, पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रह पाए जब तक रह सकते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज़ कर सकें। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था और वहाँ पर फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और वो बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फ़ोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुँचे। चलिए हम पहुँचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरल विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में, शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: से न पूछो कि तुम
1: और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोता, और 4 मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: কর্মসংস্থা হয়ে কি আপনার সে অনেক যুবাওনে বিভিন্ন ক্ষেত্র মে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত কি।
1: प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति प्रदान करने के लिए आज शिमला स्थित ओक ओवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया ताकि उन्हें मानद हेड कांस्टेबल और मानद एएसआई के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि ये निर्णय उनके योगदान व सेवाओं को उचित सम्मान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद जो देश की सेवा करके प्रदेश की सेवा में अंदर आते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है। पहले देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं, फिर जब पुलिस में आपके लिए जो भर्ती है वो की जाती है, जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं इससे पहले उसी पद पर आप रिटायर हो जाते हैं, तो एक सम्मान की कहीं कमी आएगी। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये अधिकार दिया, हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाए और हेड कांस्टेबल से ऑनरेरी आपके एएसआई।
1: गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में 246 पूर्व सैनिकों को हेड कांस्टेबल और 115 को एएसआई के रूप में नियुक्ति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। पेश है ये रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं।
3: सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने आज कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा के नवीनीकरण की चर्चा करते हुए ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये आवंटन पिछली यूपीए सरकार के दौरान आवंटित 104 करोड़ रुपए के अनुदान से लगभग 27 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने पिछले 12 वर्षों में राज्य में अभूतपूर्व रेलवे विकास कार्य किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है एचपी रेडी परियोजना से आपदा तैयारी, न्यूनीकरण और पुनर्वास प्रणाली होगी मजबूत। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
6: प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। इस क्रम में सरकार ने 2,688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलियंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी एचपी रेडी परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य प्रदेश भर में आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। ये परियोजना जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू की जाएगी और इसमें आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्वास तंत्र को स्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हाल के वर्षों में आई आपदाओं में प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 3 वर्षों में ही राज्य में 66 से अधिक बादल फटने की घटनाएं, 234 भूस्खलन और 121 फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन आपदाओं से बड़ी संख्या में जन हानि हुई है और सार्वजनिक अवसंरचना व निजी संपत्ति को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त आपदा के कारण सामान्य जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में एचपी रेडी परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करना ही नहीं बल्कि भविष्य की आपदाओं के प्रति राज्य को अधिक सक्षम और लचीला बनाना है। इस परियोजना के तहत आपदा प्रभावित सार्वजनिक अधोसंरचना जैसे परिवहन नेटवर्क, पेयजल योजनाएं, स्वच्छता प्रणालियां और विद्युत अवसंरचना को पुनर्स्थापित व सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य आजीविका और रोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा आपदा जोखिम वित्त पोषण और इंश्योरेंस के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करना है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत संस्थागत क्षमता निर्माण और मजबूत वित्तीय तंत्र को विकसित करने पर भी बल दिया जाएगा। एचपी रेड्डी परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, आपदा रोधी अवसंरचना के निर्माण व प्रोत्साहन, वैज्ञानिक भू उपयोग योजना अपनाने तथा तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से सामुदायिक तैयारी को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों, युवक मंडलों व स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेगी ताकि जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी की संस्कृति विकसित की जा सके। ये पहल न केवल इन कार्यों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद करेगी। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी और नियमित निगरानी व मूल्यांकन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश को राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जन सुरक्षा, आजीविका और विकास संबंधी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एचपी रेडी एक विस्तृत कार्य योजना है। ये परियोजना इंगित करती है कि प्रतिरोधी कार्य योजना से सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस पहल के तहत संवेदनशील जिलों और समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित रह सके। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। ऐसे समय में एचपी रेडी परियोजना सतत विकास व आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये परियोजना न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आजीविका को भी मजबूती प्रदान करेगी। ये परियोजना विकास और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चलने का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सराहनीय कदम है।
7: और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज, तो और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया। और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
8: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
7: जी।
8: और हम लोग जब गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
7: जुड़ाव बहुत
8: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती
7: है,
8: तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
7: क्या बात,
8: फिर मसूरी पहुँचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
7: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में,
8: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादा मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे फोन पे, मोबाइल पे, अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
7: क्या बात है,
8: बंदरों की तरह पेड़ों में, आम, आजकल के बच्चों ने
7: खाना।
8: आप लोग को मतलब या तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम, जामुन, अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।
7: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
8: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
7: साधन है,
8: साधन भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था एमबीसी का, मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
7: उत्तर प्रदेश था,
8: उत्तर प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है।

0: हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की मिस्टर मार्टिन, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में. तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म. तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म बिल्कुल नहीं. मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
1: हूँ, अलग ही दुनिया थी.
0: हाँ, नहीं सोच ही नहीं सकते थे. तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं एमएससी कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं ब्रेक्ट का, 3 पेनी ओपेरा. इतने में एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए. तब पता चला कि एनएसडी भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में. उस टाइम एनएसडी थी, अब तो खैर काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
1: में है,
0: पुणे में है, और लखनऊ में भी अब खुल गया है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी. तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था. तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती. तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली. तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ. उसी दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली. तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसडी का भी इंटरव्यू दिया.
1: ओहो, किसी को बताया नहीं आपने?
0: किसी को नहीं बताया घर में. और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
1: एनएसडी करूँगी.
0: एनएसडी में तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी. और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है. तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का. भटजी की नौनी तो बहुत होशियार है. अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रही है भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ. मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है. और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी.
1: नौटंकी
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड ये तो भांड कहते थे, भांड करेगी,
1: जाता था बिल्कुल
0: बहुत पूरा. तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो वहाँ के सब जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के. तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा. तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई. तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए.
1: क्या बात है.
0: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया. 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी. 250 की स्कॉलरशिप से मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊं, क्योंकि सबके खिलाफ. 250 की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी. कैसे करी, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से. तो मैंने एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपये पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड.
1: उसमें बहुत बड़ी रकम थी,
0: बहुत बड़ी रकम
1: थी.
0: उसी में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी. तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी
0: मतलब देहरादून
1: से दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा. हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए. अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक.
0: गाना

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारी विशेष सखी, विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं ये फिल्म हम आपके हैं कौन। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन वाला।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज़ सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहाँ की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का। पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें NSD की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब NSD में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती

0: जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
1: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर।
0: क्या करें। और उन उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
1: कठिन
0: है।
1: जीवन
0: अभी
1: है।
0: भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे। और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं, और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा
1: जी
0: कमाने के लिए। और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की, तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में। तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क
1: बहुत ही ये
0: है।
1: बड़ा सपना देखा है हिमानी जी। यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ. लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफ़ी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में ना, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े हैं, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गाँव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं, सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं

0: बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें
1: जी
0: मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहाँ नहीं पढ़ते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूँ, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो
1: जी
0: कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले।
1: जी
0: और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है, पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज़्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं,
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम
0: बिल्कुल,
1: तो हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू।
1: कहाँ
0: नहीं,
1: से
0: मैं भी पहाड़ी हूँ,
1: आई।
0: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
1: जी जी
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे बहुगुणा जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है, सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस
0: जरूर,
1: प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में। और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानीशुपुरी रखेंगे, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
0: ये मेरे
1: यहाँ
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद। और पेड़ लगाना, ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, ज़रूर हम टैक्स दे रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी
0: बनता
1: स्तर
0: है
1: पर
0: निजी स्तर पर, कि
1: बिल्कुल।
0: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
0: हाँ
1: जामुन के, बस वही हम खा
0: वही
1: रहे
0: हम
1: हैं।
0: खा रहे, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम। और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है?

0: क्योंकि हमारे एक क्रिएशन होता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देव की भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देव की भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि
1: जी
0: मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो NSD रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5।
1: जी
0: और जब शोज होते थे हमारे प्लेस, तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे
1: जी
0: मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था वो ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं। अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं,
1: करती
0: देव
1: क्या
0: कौन
1: हो, काम
0: इमेजिन की आदमी, ये औरत रोज
1: क्या
0: सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देव की भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देव की भौजाई, क्योंकि
1: जा
0: हम
1: रही है वो
0: कैरेक्टर
1: देखो। हाँ
0: आर्टिस्ट ना,
1: हाँ
0: हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको
1: हाँ
0: जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देव की भौजाई याद है। और वो मैं NSD से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो,
1: जी
0: क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी, ऐसी अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ
0: दिल
1: कुछ
0: वाले
1: होता
0: की,
1: है और
0: दिल
1: दिल वाले
0: हाँ कुछ
1: दुल्हनिया
0: कुछ
1: ले
0: होता है
1: जाएंगे।
0: कि रिफत भी, और दिल वाले दुल्हनिया की भी, रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार। और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी एक
0: काम किया, और ये एक
1: खास
0: मेरा जो धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला वो सुलक्षणा, उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल कर रही हैं, और एक तरह के रोल होते थे। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी, और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि
0: मम्मो
1: कला मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
0: कोई राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी

0: रोते हैं और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है।
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग,
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच
0: तो
1: है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया
0: है
1: जी।
0: जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज़्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज़्यादा बड़ी है, वो सब ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और ख़ासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: प्रतिभा
1: और
0: है,
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए
0: जी।
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
0: जी, बिल्कुल।
1: और आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप
0: है।
1: हाँ, चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी तो मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बतौर हिमानी शिवपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस लंबी
1: शक्ति
0: यात्रा
1: है और किसी भी चीज़ का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है
0: जी। अब गाना सुनवाएं एक?
1: जरूर।
0: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल
1: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती हैं। तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी हैं। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है, मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत ख़त्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: ज़रूर हम ज़रूर आऊँगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान ज़ुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नायक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियाँ हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: नमस्कार।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी

0: सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा फिल्म ओ माय गॉड बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूज़िक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जलोजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
0: जी
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी जी,
1: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
0: जी जी।
1: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूज़िक में और

0: डिवोशनल म्यूज़िक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज़ किया, दिल्ली में रिलीज़ किया। तो ये इस तरीके का रहा सफ़र
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा।
0: दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के इस सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
0: ज़रूर
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना?
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना,
1: जी
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है मेरे
1: क्या बात
0: पिताजी
1: है,
0: के साथ।
1: वाह,
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ। आप
1: वाह
0: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी जी जी जी
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ, उंगलियों के,
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह
0: और ये जो थ्रेडिंग है, ये
1: जी,
0: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को, और अपने संगीत को, और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज़ किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहाँ से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
1: जी
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है,
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मांसुरी को वेणु भी बोलते हैं,
1: जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज़ किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
1: जी
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की,
1: जी,
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गुरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने
1: वाह
0: आशीर्वाद दिया मुझे, वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया,
1: जी
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया,
1: जी
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं, और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त
1: जी
0: किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं।
1: जी जी
0: और फिर और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफ़ी देवोप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था,
1: जी
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: जी बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे, तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की, आने की।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो इस तरह से एक
1: मुंबई
0: तरह
1: आना
0: से
1: हुआ।
0: जसपाल मोनी जी
1: हाँ,
0: के,
1: वो इतना आसान, जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं,
0: जी
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता।
0: जी
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड, बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ता
1: त्याग
0: है।
1: करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस एज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे,
1: जी
0: लेकिन किन-किन फिल्मों में, जिनका आप जिक्र करना चाहें,
1: जी
0: आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया
0: जी
1: है। तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय गॉड
1: जिसमें
0: के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी
0: हैं,
1: जी
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी
1: जी
0: पीसेस हैं।
1: जी
0: जी
1: जी
0: और
1: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी,
0: जी
1: ऊंचाई,
0: जी राजश्री
1: हाँ
0: प्रोडक्शंस की,
1: जी,
0: अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी,
0: जी
1: केदारनाथ, नज़रअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह वाह,
1: मुन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी
1: सरबजीत
0: फहरिस्त
1: है, फितूर पिक्चर है,
0: है। जी
1: नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह
1: बहुत सारी पिक्चरें हैं,
0: जी
1: और भी बहुत
0: बिल्कुल।
1: सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज़ में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
0: हाँ
1: और कुछ मूवीज़ में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
0: जी जी बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं,
1: जी
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है,
1: जी
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: इन्जॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज़्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं इन्जॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं,
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंटेशन
1: एक्सपेरिमेंट
0: है।
1: और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माई गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं
1: जी।
0: और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है, और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह,
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते
1: मेटल
0: थे,
1: मेटल फ्लूट हो, नहीं ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है,
0: जी जी
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट
1: एकदम
0: है,
1: अलग है,
0: बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी
1: मुझे
0: बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं,
0: जी
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं,
0: जी
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की, एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी, एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और ये
1: था।
0: आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही देता
1: जरूर
0: हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है,
1: हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या
1: इसका
0: बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता।
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र
1: अब
0: हो
1: सर
0: गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था। इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी,
1: और बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने इन्जॉय किए ज़िंदगी में।
0: क्या बात है।
1: अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो
0: ये
1: एक
0: तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है।
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है
0: कहाँ से लाए?
1: नॉर्मल, जहाँ से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा,
1: अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज़ फ्लूट ख़रीदी जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज़ किया है 2011 में।
0: जी
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज़ करने में तो और 2 साल लगे थे।
0: जी,
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुनाता हूँ आपको।
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाई मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाल ही नहीं बजा सकते उसमें।
1: बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो ज़रूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज़ किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है।

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है, अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ, क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक
0: जो
1: में
0: मैं
1: बहुत सुनाई दे रही है
0: बहुत बहुत
1: बांसुरी।
0: बजाया मैंने इसको
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक
1: जी
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया,
1: जी
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है,
1: बिल्कुल।
0: वो पता होना ज़रूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूज़िक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: आइए
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी।
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए,
0: जी
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको।
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी।
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी।
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर, तो
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे। पर
0: वाह।
1: अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है,
0: जी
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है, गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान
1: सारे
0: मिलेगी
1: गामा पादा नी सा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़, एक दो उदाहरण देता हूँ।
0: जी
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है,
0: जी जी
1: अब सारे गामा तोड़ी ऐसे भी बजता है तोड़ी, पर सिर्फ सारे गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है,

0: ये भी सारेगामा है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें
1: इसमें।
0: प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी,
1: जी
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता हो तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज़्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए।
1: जी
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी
0: जी
1: खत्म होती नहीं है।
0: जी

0: फरमाइश भी आ गई है।
1: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
0: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश है।
1: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात,
1: ठीक है,
0: कॉम्प्लीमेंट आया।
1: कॉम्प्लीमेंट है ये
0: जी जी जी जी
1: तो
0: हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
1: जी,
0: और आपको भी हीरो कह दिया है।
1: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
0: जी
1: सो ये हीरो धुन
0: जी
1: स्पेशली डेडिकेशन टू यू
0: शुक्रिया,
1: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको, एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी,
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया, तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माई गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है।
0: जी
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी
1: सिंगर गा
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है। अब
0: जी
1: जैसे एक वो है, एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: वाह वाह, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

श्रोताओं, भी अभियुद्ध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन-जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोतियों पे आप हिंदी समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 5:05 हुए हैं। अब सुनिए आज रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद अब सुनिए भजन संध्या कार्यक्रम। 5:30 पे सुनिए युव मंच कार्यक्रम। 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिए सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। 6:30 पर सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम। 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिए देश गान। 7:10 पर सुनिए भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। किसान कल्याण विषय पर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंटवार्ता। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:00 सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। 9:15 पर सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। साहित्य जगत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर सुनिए रोमांटिक फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। और रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं भी अब आज शाम रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। 5:07 हुए हैं। अब सुनिए भजन संध्या कार्यक्रम।

भक्ति और कर्म में कोई अंतर नहीं। परमात्मा को प्रसन्न करने फल की इच्छा रखे बगैर जो कर्म करते हैं वही भक्ति है।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है।

0: कॉलेजों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोता, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 5:30 हो चुके हैं, अब सुनिए युवमंच कार्यक्रम।

युवा साथियों, स्वागत है आप सबका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त पंकज कुमार। युवा साथियों, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे तेलंगाना स्थापना दिवस के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि 2026 और इसके बाद यानी कि आने वाले वर्षों में कौन से सेक्टर्स में आएंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो युवा साथियों, भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना 2 जून 2026 यानी कि आज के दिन अपना 12वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। 2014 में लंबी और निरंतर चल रहे आंदोलनों के बाद यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। यह संघर्ष 1970 के आसपास से शुरू हुआ था, जिसने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत का उस समय 29वां राज्य घोषित किया गया था। हर साल इस दिन यहाँ के लोग गर्व के साथ उन सभी बलिदानों को याद करते हैं जो इस आंदोलन को सफल बनाने में सहायक रहे। तो देखिए, तेलंगाना के गठन की अगर हम कहानी की बात करें तो तेलंगाना राज्य की मांग कई दशक तक जो है चलती रही, जिसका मुख्य कारण रोजगार, सिंचाई, विकास और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से जुड़ी समस्या थी। इस आंदोलन को छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक नेताओं और आम जनता का व्यापक समर्थन मिला। तो देखिए, अगर हम वर्ष और मुख्य घटना की अगर हम बात करें तो 1956 की बात करें तो 1956 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विलय होकर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। 1969 में तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई। 2001 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि TRS की स्थापना की गई थी, और 2013 में केंद्रीय सरकार ने तेलंगाना राज्य गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया। 2014 में तेलंगाना को आधिकारिक रूप से अलग राज्य घोषित किया गया। आंदोलन के प्रमुख चेहरों की अगर हम बात करें तो के चंद्रशेखर राव 2014 में बने थे पहले मुख्यमंत्री, और प्रोफेसर जयशंकर छात्र नेता और आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। छात्र संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी और यूनियनें भी इस संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा रही थी। संस्कृति और त्यौहार की अगर हम चर्चा करें तो तेलंगाना का प्रसिद्ध पुष्पोत्सव बथुकम्मा स्त्रीत्व और प्रकृति का उत्सव माना जाता है, और यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा भी है। इस उत्सव में राज्य का आधिकारिक फूल जो है पीला टंडेगू है, और मुख्य जो है ये भूमिका निभाता है। तो देखिए, तेलंगाना के बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं, और आगे ये जो आगे जो आने वाले समय की जो बात है तेलंगाना में, तो इसमें तकनीकी और प्रशासनिक विकास की ये चर्चा करते हैं। तो स्थापना दिवस के अलावा तेलंगाना डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों में तेजी से प्रगति कर रहा है। टी फाइबर परियोजना, इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। यह भारत नेट प्रोग्राम के अंतर्गत एक रिंग आर्किटेक्चर नेटवर्क है। कंप्रिहेंसिव वेलफेयर कार्ड, जी हां श्रोताओं, राज्य एक ऐसी एकीकृत कार्ड विकसित कर रहा है जो सभी कल्याणकारी योजनाओं को एक मंच पर लाएगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और ताकि योजनाओं की प्रभावी निगरानी हो सके। तो देखिए, ये सारी जानकारी थी तेलंगाना के बारे में। कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे कि 2026 और इसके बाद कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा आएंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोते, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के ये मंच कार्यक्रम में। आज के मंच कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे तेलंगाना दिवस के बारे में, और कार्यक्रम में आगे हम आपको जानकारी देंगे 2026 के बाद कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा आएंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो अमित कुमार राणा के बारे में। देखिए, शौर्य चक्र विजेता मार्कोस कमांडो अमित कुमार राणा का सड़क हादसे में निधन हो गया है, और इन्होंने कश्मीर में दिखाई थी जो है गजब की बहादुरी। और शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो अमित राणा ने ये ज्वालामुखी तहसील के लाहरू गांव से के रहने वाले थे। कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन धरना और ऑपरेशन शोक बाबा के दौरान उन्होंने अदम्य साहस से आतंकियों का मुकाबला किया था। तो देखिए, इन दोनों ऑपरेशनों में इन्होंने काफ़ी जो है डट के जो है आतंकियों का मुकाबला किया था। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान अपनी असाधारण वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। शांतिकाल में यह वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य अवार्ड है। उनकी गिनती इंडियन नेवी के चुनिंदा मरीन कमांडो में होती रही है। हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो अमित सिंह राणा लीडिंग मैकेनिकल इंजीनियर थे, और ऑपरेशन धरना के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर महेश कुमार को कवर देते हुए बहुत करीब से एक आतंकवादी को मार गिराया था। दोनों अफसरों ने इस ऑपरेशन में आतंकियों का सफल

0: सरकारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं का फिर से स्वागत है आपका आज के युमंच कार्यक्रम में। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि 2026 और 2026 के बाद कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा आएंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, बदलती टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप कल्चर ने जॉब मार्केट को बदल दिया है। नई रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इन सब के बीच लोगों के मन में आने वाले समय में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी और किस फील्ड में करियर बनाना ज़्यादा सुरक्षित है, इस तरह के सवाल आते हैं। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप कल्चर ने जॉब मार्केट को बदल दिया है। नई रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनियां जो है स्किल्ड फोकस्ड हो गई हैं और यही वजह है कि कुछ सेक्टर में तेजी से भर्ती बढ़ रही है, जबकि कई जगह पारंपरिक नौकरियों में की जो है मांग कम हो रही है। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 2026 के बाद कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो है ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में सबसे ज़्यादा भर्ती ई कॉमर्स और टेक्स जो है स्टार्टअप में दिखने को मिल सकती है। देखिए, सेक्टर में करीब 8.9% रोजगार वृद्धि दर्ज की गई है। तेजी से बढ़ती डिजिटल शॉपिंग, क्विक कॉमर्स, ईआई आधारित प्लेटफॉर्म्स और छोटे शहरों तक इंटरनेट पहुंचने की वजह से कंपनियां लगातार विस्तार कर रही हैं। हालांकि अब सिर्फ बड़ी संख्या में भर्तियां नहीं हो रही बल्कि कंपनियां स्किल्ड लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, ग्रोथ मार्केटिंग और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद चर्चा करते हैं हेल्थ केयर और फार्म सेक्टर में भी जो है बढ़ रही हैं नौकरियां। जी हाँ, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में भी तेज़ी से रोजगार पैदा जो है हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में 7% तक रोजगार वृद्धि देखने को मिली है। प्राइवेट अस्पताल का विस्तार, हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ता दायरा और फार्मा एक्सपोर्ट में भी जो है तेजी, इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं अब हेल्थ सेक्टर सिर्फ डॉक्टर और नर्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें डिजिटल हेल्थ एनालिस्टिक और रेगुलेटरी अफेयर, टेली मेडिसिन और एआई आधारित डायग्नोस्टिक जैसे सेक्टर में नई नौकरियां जो है तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसी साथ मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जो है तेज़ी आई है। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। टीम लीज रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में 6.6% रोजगार वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की PLA स्कीम, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनियों को बड़ी संख्या में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया में भी बढ़ रहे हैं मौके। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के बाद कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया भी तेज़ी से बढ़ते करियर और सेक्टर में शामिल हो गए हैं। YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म ने नए रोजगार के रास्ते खुले हैं। कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, जर्नलिस्ट और मीडिया जो है स्ट्रेटेजिस्ट जैसे भूमिकाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, अगर आप भी जो है जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं और संवेदना, भाषा और तकनीक पर अगर आपके भी पकड़ है तो युवाओं के लिए मीडिया की फील्ड में जो है बहुत सारे जो है करियर ऑप्शन हैं। तो देखिए, मीडिया का महत्व

वो तो आप सभी को पता है, और मीडिया में जो है विषय का चुनाव कैसे करें ये सबसे महत्वपूर्ण है। मीडिया विषय का चुनाव करने से पहले आप इस विषय में अपनी रुचि को जान लें। यदि आप में क्रिएटिव राइटिंग स्किल है और इसके साथ ही आप अच्छा बोल लेते हैं तो मीडिया आपको आपकी जो है योग्यता, अपनी योग्यता प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका देती है। तो देखिए, भारत में बहुत जगह ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से आप जो है मीडिया के कोर्स कर सकते हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय मीडिया व संचार विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय से भी आप ये कर सकते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप मीडिया के रिगार्डिंग जो है कोर्स कर सकते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से भी आप मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। देखिए, 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद आप शुरू कर सकते हैं पढ़ाई। मीडिया में करियर बनाने के लिए किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं के बाद आप चाहे तो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। भारत में कई बड़े सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री स्तर पर मीडिया की पढ़ाई होती है। और देखिए, ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा, पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी नेट भी कर सकते हैं। और मीडिया के क्षेत्र में जो है बेहतर अवसर जो है क्यों हैं, हम आपको बता दें कि इसमें रोजगार की संभावनाएं असीम हैं। मीडिया की पढ़ाई करने के बाद आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, फोटो प्रभाग और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय आदि के अधिकारी, सरकारी एवं प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ वेबसाइट, प्रोडक्शन हाउस, प्राइवेट और सरकारी न्यूज़ चैनल, प्रसार भारती, टीवी, रेडियो, रिसर्च डिपार्टमेंट्स में या जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिकेशन डिज़ाइन, विज्ञापन हाउस, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और मीडिया मैनेजमेंट एनजीओ में जो है आदि में जो है रोजगार के अवसर मिलते हैं। सोशल मीडिया में भी रोजगार के बेहद अवसर जो है आपको मिल सकते हैं। तो युवा साथियों, आज के युवमंच कार्यक्रम में ये थी जानकारियाँ। उम्मीद है आपको ये सभी जानकारी आपके काम आएंगी।

श्रोता, अभी आप युमंच कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिए सफर सुहाने, गाने नए पुराने कार्यक्रम। छह बजकर 30 मिनट पर सुनिए स्थानीय बोली में किसानवाणी कार्यक्रम। 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 14 आज 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम किसान कल्याण विषय पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट वार्ता।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है।
1: जनगणना की शुरुआत हुई है, इसमें कल इन्होंने गवर्नर साहब की थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घर की जनगणना की है। इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुसार जनगणना की जाएगी। सारी इन्यूमरेशन जो है अभी हाउस वाइज हो रही है, तो इस मौके पर मैं सबको चाहूंगा कि जिसका अपना घर है वो अपने घर को सेल्फ इन्यूमरेशन भी करवा सकता है। जो इन्यूमरेटर है उसके घर पर भी आएंगे, उसको सही जानकारी देनी चाहिए। गाड़ी की जानकारी है, पक्का मकान है, पक्के मकान में क्या सुविधाएं, सब सुविधाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता इन्यूमरेटर को।
0: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम व बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 11 से 30 सितंबर 2026 तक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संपन्न किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आज लोक भवन शिमला में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों में एकता, सद्भाव, पारंपरिक सम्मान और राष्ट्र गौरव का संदेश निरंतर प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण उपचारात्मक मॉडल से विकसित होकर एक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है। इस ढांचे में निवारक, पुनर्वास, उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल शामिल है। उन्होंने कहा कि देश में 182,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विजनरी लीडरशिप में हम आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें वह विकसित भारत तभी होगा जब हेल्दी इंडिया, और हेल्दी इंडिया बहुत बड़ा की फैक्टर है अगर हमें इसको विकसित भारत बनाना है।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वे आज सोलन जिला के कसौली उपमंडल में काणों के समीप धर्मपुर सुबाथू कठनी मार्ग के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम

0: सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 13 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए करीब 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस सड़क का 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गढ़खल कसौली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट प्रतिबंधित सड़क मार्ग पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद सचिवालय का घेराव कर फैसले को वापस लेने की मांग की। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ताओं की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोक रही है, जिससे उन्हें समय पर अदालत पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
1: हमारी सब प्रॉब्लम को समझकर बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है, तो हमने भी कुछ प्रपोज किया, कुछ उन्होंने प्रपोज किया, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर हम घूमने नहीं आते हैं, हम यहाँ पर अपने क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है उसके लिए आते थे, तो उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें आपको कंसेशनल जो है जो परमिट्स हैं वो दिए जाएंगे और इन दी मीन टाइम आपको वो जो सिस्टम है चलेगा, लेकिन वो वही वकील आ सकेंगे जिनको सर्टिफाई हमारे बार के प्रधान करें।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: श्रोते आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 6:05 हुए हैं। अब सुनिए सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। श्रोतन स्वागत है आप सबका सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त पंकज कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुहाने सफर की एक गीत के साथ, लेकिन उससे पहले बताइए मुझे कि क्या आपको भी इस दुनिया की परवाह है? कौन, कब, क्या और क्यों कहेगा? तो कुछ पल के लिए मेरे संग आओ, रेडियो ऑन करो, रेडियो की आवाज बढ़ाओ और भूल जाओ, बस झूमो खुद के साथ कुछ पलों के लिए।
6: ताके ने दिखे, ताके ने दिखे, ताके ने दिखे,

हाँ जानता हूँ कि अब तुम नहीं हो, पर तुम्हें एक बात बताऊँ, हर पल मेरे साथ रहते हो तुम, कभी हवा बनकर तो कभी बारिश की बूंदें बनकर, अक्सर आती हो मिलने तुम मेरी यादों में।

तुम ही मेरा अहम हो, तुम ही सुकून, तुम ही मेरी हिम्मत हो और जीने की वजह भी हो तुम। हाँ, मेरे इन लबों की मुस्कान भी हो तुम।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: माना कि दूर, बहुत दूर हूं मैं तुमसे, पर कभी भी आवाज दोगे तो तुमसे मिलने आऊंगा, हवा बनकर, एक एहसास बनकर, तुम्हारे इस दिल की धड़कनों में हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ।

जानती हो, तुम्हारी वो आंखें, जब आखिरी बार देखा था तुमने मुझे, उनमें मेरी परवाह, वो लफ्ज़ों का सुकून आज भी याद है मुझे।

श्रोताओं, भी आप सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुन रहे थे। 6:30 होने को हैं आपसे थोड़ी ही देर में। सुनिए किसानवाणी कार्यक्रम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: रोशनी है, ओ रोशनी है।
7: ओ भाई पता नहीं उन्हें इस टाइम कौन आया भी या।
6: रोशनी है।
7: ओ आंजी आंजी।
6: करे ये ही।
7: ओ करे या ही कुत्ती हो जाना ही है या।
6: ना बड़ी बार नाराज हो अधि पे प्राणी आई है इस वक्त हैं।
7: ओ ना ना गुलाबू बहन जी, तू है तो क्या नाराजगी, तू है तो आवा सिर मत्थे बैठा कने।
6: हाँ ना मैं सुनिया पे तू भी बीमार हो दी अजकल, कने तेरी मैस भी बीमार हो दी।
7: आ चाल पूछने आए भाई।
6: और
7: दिने को दिखेता
6: मे दिने तीजो पता नहीं पे काम कार अजकल मुकदे, हूं खेतर के काम कार पे दे भी अन दिखे। ट्रैक्टर आला आए नहीं गए दा दिने तुआड़ा करना।
7: हाँ ट्रैक्टर आला तो भाई घूमे रे आया, कने एक नहीं त्रै त्रै घूमे रे अजकल तो रूप च।
6: और ता मैं बोले पे मौके पर चौका मारी लेंदे ना, कने तुआड़ा जी करवाई लेंदे खेतर है दिन तो खरे ही है। कल तेरी सास मिली थी है बोला दे ही भेजती हद गया बाई बजी दी बोले है, कने भाई आंधी मैं भी बीमार ही कने अजकल तो ग्रां च देव नहीं है पे कोई सुख शांत पट्ठे पुछण आई आओ।
7: हाँ तो खरा सुनाया था आई ता आई तू दिख पल ए दिख ए पेरा नील दिख पल केड्डा वड्डा नील है पेरा
6: ना। ता ए सच्चे ते बज्जी दी कि पे करे ता नी कोली पे दिया ही सास नू।
7: ओ ओ क्या गला दी है येड़ा कुछ नहीं है, ओ कोती दी ही तूता पर ना।
6: अच्छा
7: उन पता भी माला जो आरा का पठा ता भी उन चाहिए दई है या ता रेड नहीं लगी रही उसे पता नहीं खुंगे ने कुती लगी गी आई।
6: पाई खुंगे ना पंगे लेने ना ता ता रोशनी है दे आई होना।
7: तो उन क्या करना है या पाई है जी माल पशु करे बनी रही है ना, तीस खातर के कुछ करने पौंदा।
6: हाँ भाई तौंदी पखी दी ना दिख मे आज भी कदी आ तुप या टाक कुआड़ते ही लगी रही ना, पर फिर भी ज्यादा ते ज्यादा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रही है, कने घट ते घट रही है 3 डिग्री सेल्सियस तापमान अज।
7: ना गर्मी तो खरी हो गई है, चल बरखा छिड़का भी खरा होया है ना।
6: आओ मे दे तौंदी पखी दी तो माला भी क्या करना बेचारे दिख माला जो आरा भी चाहे तो सुके घा ने सौगी, कने दिहाड़ी बरखा हो दिहाड़ी में पूरा दिन माला जो मैं सुके घा पाया, कने मैं इती है संजो तो दूधा नहीं दिती अभी ता आरा कुती ते पगेरना है ना जो चलो बरखा बुरखा होंदिया रहा ना ता लूंग ता हो दी भी, पर कई बार मैं एकदम ही लूंग जे इसे बड्डे ने माला नहीं होंगी भी पाई बसहरा का डर रहा, फिर कई किस्म दया जे इसे समस्या और हो जाएँ, पर मैं आरा पत्ता कुत्ते पाना भी है ना ता तूत तात अजकल हो धियाँ जे उम्र हो भी ता दया दया रेड़ी ने माला जो पाई दे भी अन्न पर पाए रुखा पर जे आना है दाए संभलोई ना कौना।
7: वो संभलोई नहीं कौ कौन सोचा भी अहां जो लगी जाओ, पर क्या करिए जे हूं ग्रह दसाई हो ता
6: फिर भी थोड़े ग्रह सरिए भी पे चल थोड़ी लगी ज्यादा नहीं लगी भी, पर मैं इदा दस तू मैं जो क्यों इदा।
7: ओ क्या दसू आए कट्टी ना तीहे पाइए पता नहीं अंदर बाहर कर दे टाइम जे असे मैं सिरे थना जो जे है दंद लाई तरह ही है कि क्या कि तेरा पता नहीं लग्या हां जो में ना, पर पे ओरा कुछ एड़ा ही आया जखम बनी गया थना।
6: अच्छा तो दुआ दू ने लाई।
7: दुआ लगाई आई पहले हल्दी उल्दी लगाई ना कने फिर और सारा कर दी रही काम ना, पर आनी फर्क पौधा कने से ना इया लगू जन अगे अगे फैला रही है या। फिर भाई कि स्याने बोले पे है दूस हुंदा ना सो पीने लगावा बोले पे दिया।
6: अच्छा।
7: बिल्कुलियां त्यूरी हाई पी देना खरा ठीक।
6: अच्छा
7: तो मैं तो है लगाया है तभी बड़ा फर्क आउन
6: तसाई लाना कई बार दे हुंदा ना पे जे घरेलू तरीके हुंदे ना ये काम करी आंदे भी हन है बोलदे ना पे कुती अगर दवाई दी जरा ठोंग पुड़ी आओ तो तिस्ते फर्क पई आंदा भी है ना, भूमिका मिना दवाई खाए ने आहे घर जो आई आंदे भी हन, कने कई बार क्या हुंदा पे थोड़ी जी देगे चीजा तेज आ स्यां जो आराम मिली आंदा भी आ।
7: आओ तो तिस्ते बड़ा फर्क पे है या मैले दिखी लेंदे लगाई ने 5-4 बारी तिसो भी अगर पे आंगा फर्क तो ठीक आ, नहीं तो फिर डॉक्टर अगे जाई आंगे।
6: भाई देख ना दूने ते मैंने छड़ी सकदे हुण तेरी मैं जे इसे सूई दी जे कद्दा थाने दूने ते छड़ देंगे तो ती तो बसैर पे आना भी आ दूध नहीं परोजदा रहना ती।
7: आओ आओ
6: कला ना माला दी भी समस्या माणुआ दी भी समस्या, एक तो लगी दी तौंदी पे इयां ही फुक काली होई दी हुंदी अजकल, कने भाई उपरा ते बीमार हो जान तो फिर ही तो टेंशन लागू हो जाती भी, कने भाई शारीरिक थकान कने कई किस्म दे रोग जे माणुओं लगी आंदे भी आना
7: ए ता है परेड़ा पेड़ी गर्मी अरे मौसम च जे अस भाई अपना भी ध्यान रखना माल पसुर भी ध्यान रखना हुन देखा ध्यान भी क्या रखना पे हुन मैसनी जे प्यागा बाहर बननी हुंदी ना ता आऊ तो सार ते परती जो पानी प्याई
6: तौंत गया ता देखना पानी माल जो दसना जरूरी है कन तीन चार बार जे है माल पानी प्याई देना चाहिंदा
7: ता ताई जे असे पशु फिर ठीक भी रहंदा ही है या
6: हां देया माल दे शरीर च पानी दी कमी नहीं होंगी ना ता भाई गुआ गुंतर भी माल खरा करदा कन का भी जे असे चपाए ना खाई लैंदा भी अपरीक गल ही ना पे पानी प्या दी की और भी दिया दी मैं जो सौगे खाने पीने जो कुछ
7: ना ना पूरा आहार दिया जो दाना मिश्रण सब कुछ दे दी आई कन्ने जहां तक हो सकदा भाई आरा चारा भी दिना च जरूर पांदी आई
6: हां भाई तीन बार नहीं पाऊंगा माल जो आरा का ता एक टाइम जैसा ता जरूर पाना ने ता मलाई गलाई ने पाई ते भी आया है ना
7: कर दी मलाई गलाई ने पाई दी ते डों सुक्का सीना सारा इकट्ठा करने खाई लैंदी आई ना
6: पहाड़े दे बोरुआ लेने जी ऐसे चली दी रहंदी फिर ताले दिखा ताली कहा जो चली दी ताली दिखा ताली मैला सटना चली दी कने जे रोशनी मैला सटना भी जाओ तो तीह दी डाल कदी खाली नहीं हुंदी चाहे तीहा एक ही पुल लियाना और एक आधा तां भी लियांदी कने फिर भी क्यों हो गया पे मैं ही जो
7: एड़ा ही होइरा और नहीं कुछ मनी ठीक ही
6: भाई देख ना जे पे यांगा ना फर्क ता ठीक है ना बोबा पे दिया डॉक्टर ने दसी लैनी भी गां बरसात पौनी भी ता रोग बधिया है ता समस्या हो जांदी फिर
7: नहीं है भी अजकल पता क्या मक्खी मच्छर ज्यादा हुंदे हैं फिर उन जख्म बनी रहा हूं क्या अब तक कई बार मक्खी मुखी बैठी गई होंगी तो इससे भी यह जख्म बधी आंदा ही है या इं तो भाई साफ सफाई रा पूरा ख्याल रख दिया है ना पर हूं दिख माल पशुआ गोडा गोवा भी होना गुंतर भी होना भाई ओ ही जांदी कोई ना कोई समस्या
6: एक कम्मा जो आई थी तीजो गए मैं बोले भाई है बुन तेरे खेतरा दे बखा नहीं है खेतर गार है तिथि का मैं लिया मैं खेतरा दिया मिट गया दा है मृदा परीक्षण करवाना था मैं
7: तब करवाई लेना ही है या योजना तो सरकार हर वास्ते कई चलाई रख दी आई तो तू दिख ना योजना लाभ नहीं ले सकती
6: ना लाभ तो मैं ले सकती पर कल नहीं ले सकती तू भी चलना सौगी
7: वो तो चली पाऊंगी सौगी री क्या गल दिख मिली बरती ने काम हो जाते हैं ना कने इं बेड़ा हों पे चल सौग हो ना तो छोड़ो जाता कोई भी काम
6: खेत रद गया मिट गया परीक्षण करवाना जी ऐसे बड़ा जरूरी है दिख मैं दू तीन साल बाद ही ना तिथि फसला तो ती का पुआजा जी ऐसे बड़ा घट मिला था मिंजो कने पाए पिछले साल तो मैं खाद भी खरी पाई खेत रची बी भी खरा पाया पर ती के बावजूद भी पुआजा जी ऐसा खरा नहीं मिले ना फिर मैं बोले पे हूं अगली बार जे फसल बानी तो पहले पाई खेतर दिया मिट्टी की जांच जे इसे जरूर करवानी
7: हुंदा पता क्या ना हुन मिट्टी जहां कोई बीज बाना ही आया तो तिस बीजा जो ज्यादा बढ़भार होने ताही या तिस ज्यादा उन्नत बनने वास्ते जे है ना एड़ी मिट्टी की जरूरत हुंदी आई तिस जे सारे पोषक तत्व रहे ना तिया जे भाई नाइट्रोजन हो गया फास्फोरस हो गया पोटास हो गया सल्फर जिंक हो गए या और भी बड़े सारे पोषक तत्व होंगे थे जहां मिट्टी पाए जाते हैं अगर से सारे पोषक तत्व मिट्टी होंगे ताई जे असे तिस बीजा अच्छे तरीके ने जे असे पैदा होना बदना कने अच्छी आहां जो जैसे पैदावार देनी आई
6: आओ फिर मैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए दा ना पिछले साल फिर मैं दिखा दी ही पे दो साल बाद जे आ पे ए नवा बनवाना पौंदा है क्या गलांदे कड़े की कराना पौंदा
7: रिन्यू
6: हां रिन्यू करवाना पौना दो साल बाद तो हुन से भी हो जाने दो साल तो मैं सोचा दी ही दोई काम जे है लगे लगे हथे हो जाने ना तो तू सौगी चली पौया मैं फिर पता तो लगा पे खेत रदिया मिट्टी च कुहा चीजा दी कमी तो तीस बने खादी कने बी पांगे तो पुआजा वो बबांका मिल गगा जो
7: क्योंकि पता लगी आंदा ना किसी चीज की कमी यह चीज की कमी होगी सह चीज फिर यहाँ मिट्टी च पानी है ना कने मिट्टी जे ऐसे पूरा संतुलित हो जाना पे की तरीके ने कने फिर पैदावार जैसे ठीक होंगी कई बार क्या होंगे ना अहें एक पोषक तत्व तो सजे पहले ते आया मिट्टी अहें तीस और पाते
6: रहते जो नाइट्रोजन बोलते फिर अहां तीस और पाते रहते खेत तिस्ते पाई है खेतर दिया मिट्टिया का भी कुआड़ा हो जाता ना कने मिलता भी कख
7: तड़ा पे अहां जे असे स्वास्थ्य कार्ड बनाना पे स्वास्थ्य कार्ड बनाए ने फायदा होंदा ना पे अहां जो सारी चीजां पता लगी आंदी पर एड़ा ना पे पहले विभाग जाना ही है कि पहले जे हुन पता था ए पे सैंपल सूंपल की लेने कि दो साल पहले भी तो बनवाया था
6: सैंपल ले आना हां खेत रते ना पहले फिर ही जाना फिर जांच भी हो जानी ना कने कार्ड भी रिन्यू हो जाना पर तू दिया दस पे तिग्गो के प्रौने जांदे तां तू चाह पानी ने पुछदी भी
7: चाह पानी तो पूछा ही ना पर पे देख कोई जानकारी वाली गल बात चली रही हो ना तो पहले हुन जानकारी ले क्योंकि चाह पानी तो चली रही रहा
6: ओ भाई चाय रहनी दे तौंदिया दा टाइम ना कने गर्मी बड़ी भारी भखी दी ना कने दे आपे कल जाना ना तो कागज पत्र पाई लेंगी सजे लगने ना पहले बनाए दा तैं मैं कार्ड कने पानी लिया पहले पानी पियाई दे
7: तो पानी पियाई दी आई ना तो ठीक आऊं पानी लियांदी

0: फिर उसने ना लोक गीता तो मिंगो बड़ा बांका सुनाया ना, पर दिख तेरा मुंडू किसकी दे गया कागज मेरे हथे ना। बोलिया पे ताई ए हमीरपुर सब्जी मंडी ते मिल दे फला सब्जियां कने जेंसा दे थोक पाए ना, कने न मम्मियां के पड़काई दिया पाई अजकल दे आड़े खेलन जो बड़े भारी दौड़ दे बारह संज के बेले।
1: ओ एड़े काम माम सारे रही ना, लिया इस कागज ना दिखूं भला क्या क्या लिखी रही है इस च।
0: पढ़ भला सब्जियां दे पा पढ़।
1: हाँ तो इस लिखिरा पे आज आलू प्रति किलो रे 8 से 13 रुपये,
0: अच्छा
1: आलू पाड़ी 14 से 16 रुपये, प्याज 20 से 22 रुपये, गोभी 45 से 50 रुपये प्रति किलो,
0: अच्छा
1: बंद गोभी 15 रुपये, कने शिमला मिर्च आज रही 50 रुपये 1 किलो, घीए दज का भाव रे 18 से 20 रुपये, भिंडी 20 से 25 रुपये, टिंडा भी 20 से 25 रुपये, कने करेला रे आ 30 रुपये प्रति किलो। टमाटर की गल करिए रे आज 14 से 15 रुपये, मूली 25 से 30 रुपये, राम तोरी 30 से 40 रुपये, हरी मिर्च 40 से 45 रुपये, नींबू 70 से 80 रुपये किलो, खीरा 20 से 35 रुपये प्रति किलो,
0: अच्छा
1: बैंगन 30 रुपये, कने अदरक 150 रुपये प्रति किलो रे आ, फ्रांस बीन आज प्रति किलो रही 100 से 120 रुपये, कद्दू 15 से 20 रुपये, अरबी 30 से 35 रुपये।
0: कने जे गल करिए फलां दी ता केला एक डब्बा 12 किलो दा भारिया 480 से 550 रुपये, सेब 1 किलो रे जी 165 से 170 रुपये, अनार 1 किलो दा भारिया 220 रुपये, मौसमी 1 किलो रे 100 से 110 रुपये, पपीता 50 रुपये किलो, कने कीवी 1 डब्बे दा भारिया 1200 से 1300 रुपये, अमरूद रहे जी 125 से 130 रुपये, खरबूजे का भारिया 25 से 35 रुपये किलो, अंब सफेदा रही अज 70 से 75 रुपये किलो, अंब तोता रही 50 रुपये किलो, कने अंब दशहरी का भारिया 60 से 65 रुपये 1 किलो का।
1: कने अगर तुह जो दसो ना मैं आज पे जिनसा रे थोक भाव जिसे क्या रे, तो बासमती चौलां का भाव रे 40 से 100 रुपये, बेगमी चौल 30 से 40 रुपये, दड़ा चौल 25 से 30 रुपये, छलिया का भाव रे 20 से 23 रुपये, दड़ा गेहूं 19 से 23 रुपये, मूंगिया की दाल 90 से 100 रुपये, चना दाल 75 से 150 रुपये, सुखी मिर्च 350 से 380 रुपये, अन्य देसी घी 500 से 650 रुपये, सुखा धनिया 300 से 320 रुपये प्रति किलो।
0: भाई दिखना अहन जो घरे बैठी दे सब्जी मंडी दे रेट पाजे से भी पता लगी गे, पर गल दे हूं गुलाब जो घरे थोड़ा जहा काम ना, तो आऊं घर खा चली पाँदी, पहले गोडा फेरी पाना पौनी फिर घर जाना पौना, तो चली पी रही राम राम है।
1: ठीक है रही राम राम, कने प्यागा टाइमर मुझे फोन कर दे ना ना।
0: हाँ ठीक है वो रही राम राम।
1: राम राम जी।
2: अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: कुतला बोल रहा
2: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सब ही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप पे बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी अलते जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: कार्यक्रम किसान वाणी दे प्रायोजक
1: कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय
0: भारत सरकार।

श्रोतों भी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। शाम के 7 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा MR अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: श्रोतिया आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 7:05 हुए हैं, आप सुनिए देशगान। कार्यक्रम का पहला देशगान आपको सुनवा रहे हैं, एक एक इंच भूमि के लिए।

0: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: श्रोतन, 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे किसान कल्याण विषय पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंटवार्ता।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग योर डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
4: Namaskar, thank you.
3: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
4: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें

0: सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था,
1: जी
0: जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का यह नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं
1: जी
0: और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का, वो बहुत कम है।
1: जी
0: यानी सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि वो उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं,
1: जी
0: इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी
1: जी
0: पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है,
1: जी
0: तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया,
1: जी
0: और उसकी चेन इतनी है कि गांव का, हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: Mr. Iyer, coming to you, Mr. Singh has, you know, outlined so beautifully that what has been the basic change in the approach of the government towards the agriculture sector. We would like to know from you the stability and the momentum that we have seen in the agriculture sector. Even in the difficult years of COVID, the agriculture sector kept growing. How do you see the approach of the government? What, according to you, have been the, you know, major areas where the government, you feel, has, you know, hit the bullseye, and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, you know, Government of India under Prime Minister Modiji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision, of a plan of Viksit Bharat.
1: Yes.
2: So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it. And that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects, they are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world.
1: Yes.
2: See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, unko madad kiya gaya hai, unko haath pakad ke khade hone ke liye, jo bhi sadhan ki zarurat hai, wo sari cheeze bhi dete hue, भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में, हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, to see that the rural India transforms. You have seen that the government has taken into account all the new problems that are coming, like climate change, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan. Then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know.
1: Yes.
2: That is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming. So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
0: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई. सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है. जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई.
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी. उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा. तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई. सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है. लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी. और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी. तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है. जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है. चौथा था बीज, बेहतर सीड. अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए. तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता

0: उम्मीद यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग करा। हमारे साइंटिस्ट इतना बड़ा आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए, और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level,

0: farmer has a problem in disposing his produce.
1: Yes.
0: So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem.
1: Yes.
0: Because you need to see financial risk management. And what is needed today is a large-scale infrastructure investment.
1: Yes.
0: To increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
0: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
0: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is like for instance a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See,
1: yes.
0: what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं. प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है.
2: देखिए कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. चाहे उसे लोन लेना हो क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज़ से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ और यह पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पर आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं. हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं. अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं. एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में. कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है. जरा सोचिए एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़. और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही.
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे.
2: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता. अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं. दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है. आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया. हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे. आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
0: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. Mm-hmm. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop, more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishw hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hain unka share bhi badhkar 20% ko par kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye, iske bare mein aap hama thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा। हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है। अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को, और बेहतर मूल्य मिल सकता है, और कंज्यूमर्स को भी
3: राहत मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है, अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा। तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है। इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा। कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है, लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर। तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं।
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 170,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
3: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ high value crops like coconut, cocoa, cashew, sandalwood in coastal regions and agar trees in northeast and almonds, walnuts and pine nuts in hilly areas. These have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward using the strengths of the opportunity?
0: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government. And

0: was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
1: श्रोतन 7:45 होने को हैं, आपसे थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1765 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर के पद घटाने और निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में सही जानकारी देने का लोगों से किया आग्रह। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक तालमेल बढ़ाने पर दिया बल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने का राज्यपाल से किया आग्रह। और विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 6 जून से गाजा में होगा शुरू। विभिन्न राज्यों के युवा स्पीति घाटी के गांवों की संस्कृति से होंगे रूबरू। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के पद घटाने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों के पद कम करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य में एक ही काम होने पर भी अलग अलग पद बनाए गए हैं जिनकी जरूरत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च अधिकारियों के पद कम किए जाएं और निचले स्तर पर कर्मियों की भर्ती बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और सभी फैसले मिल बैठकर ही लिए जाएंगे।
5: उच्च अधिकारियों की जो पद है ना, उसको हम कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है, काम वीकी है, तो थोड़ा सा निचले स्तर पर उसको जरूर कम किया जाए। तो मैंने बात की थी कल ही, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बने डीजीपी साहब से भी बात की है, इन पदों को भी कम किया जाए। जबकि हमने फॉरेस्ट के आईएफएस ऑफिसर के 117 में से 86 पद हमने कम कर दिए हैं। आईएएस ऑफिसर के अभी 153 से 147 किए हैं। ये छोटा सा प्रदेश है, 75 लाख का प्रदेश है, बड़े पद है, बहुत ज्यादा पोस्टें हम क्रिएट कर देते हैं। कार्य एक ही पुलिस में तो ठीक है, लेकिन नीचे कर्मचारियों की पहुंच कम हो, तो निचले स्तर पर हम ज्यादा भर्ती करेंगे और वो सब बैठ के आपसी मेलजोल से ही होगा।
4: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री

0: कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है।
1: जनगणना की शुरुआत हुई है, इसमें कल इन्होंने गवर्नर साहब की थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घर की जनगणना की है। इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुसार जनगणना की जाएगी। सारी इन्यूमरेशन जो है अभी हाउस वाइज हो रही है, तो इस मौके पर मैं सबको चाहूंगा कि जिसका अपना घर है वो अपने घर को सेल्फ इन्यूमरेशन भी करवा सकता है। जो इन्यूमरेटर है उसके घर पर भी आएंगे, उसको सही जानकारी देनी चाहिए। गाड़ी की जानकारी है, पक्का मकान है, पक्के मकान में क्या सुविधाएं, इन सब सुविधाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता को।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक दीप शिखा शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति प्रदान करने के लिए आज शिमला स्थित ओक ओवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें मानद हेड कांस्टेबल और मानद एएसआई के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद जो देश की सेवा करके प्रदेश की सेवा में अंदर आते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है। पहले देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं, फिर जब पुलिस में आपके लिए जो भर्ती है वो की जाती है, जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं इससे पहले उसी पद पर आप रिटायर हो जाते हैं, तो एक सम्मान की कहीं कमी आएगी। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये अधिकार दिया, हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाए और हेड कांस्टेबल से ऑनरेरी आपके एएसआई बनाए, इसलिए ये आपको हमने ऑनरेरी सिस्टम को हमने लागू किया है।
0: एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आज लोक भवन शिमला में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों में एकता, सद्भाव, पारंपरिक सम्मान और राष्ट्र गौरव का संदेश निरंतर प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद तेलंगाना के नागरिकों को सम्मानित भी किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति संविधान के शेड्यूल 5 के अंतर्गत राज्यपाल के पास निहित है। जगत सिंह नेगी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को हटाने का अनुरोध भी किया, ताकि प्रदेश के जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों की युवा पीढ़ी को नौतोड़ का लाभ मिल सके। राज्यपाल ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की और जल्द उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वे आज सोलन जिला के कसौली उपमंडल में काणों के समीप धर्मपुर सुबाथु कठनी मार्ग के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 13 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए करीब 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस सड़क का 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गढ़खल कसौली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में 6 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से युवा भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं को स्पीति घाटी के 10 चयनित गांवों में स्थानीय परंपराओं व संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा में 6 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 50 युवा भाग लेंगे। युवाओं को सीमांत क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं और विकास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। प्रतिभागी बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आएंगे। युवाओं को स्पीति के 10 चयनित गाँवों में समूह के रूप में भेजा जाएगा। वहाँ वे स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनके जीवन और संस्कृति को समझेंगे। ये कार्यक्रम मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और ITBP भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। यह पहल युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट प्रतिबंधित सड़क मार्ग पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद सचिवालय का घेराव कर फैसले को वापस लेने की मांग की। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ताओं की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोक रही है, जिससे उन्हें समय पर अदालत पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3: हमारी सब प्रॉब्लम को समझकर बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। तो हमने भी कुछ प्रपोज किया, कुछ उन्होंने प्रपोज किया, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर हम घूमने नहीं आते, हम यहाँ पर अपने क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है उसके लिए आते थे। तो उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें आपको कंसेशनल जो है जो परमिट्स हैं वो दिए जाएंगे और इन दी मीन टाइम आपको वो जो सिस्टम है चलेगा, लेकिन वो वही वकील आ सकेंगे जिनको सर्टिफाई हमारे बार के प्रधान करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर के पद घटाने और निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में सही जानकारी देने का लोगों से किया आग्रह। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक तालमेल बढ़ाने पर दिया बल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने का राज्यपाल से किया आग्रह। और विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 6 जून से काजा में होगा शुरू। विभिन्न राज्यों के युवा स्पीति घाटी के गांवों की संस्कृति से होंगे रूबरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने को हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम देशभक्ति। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर सुनिए चांदनी रातें कार्यक्रम। और 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोतन, रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में विविध भारती आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
0: दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

प्रस्तुत है हवा महल। इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं संतोष श्रीवास्तव की लिखी झलकी ससुराल का नौकर। निर्देशक हैं राकेश ढोंडियाल।

0: अरे सुबह के 9 बज गए पर रामू का कहीं पता नहीं है। रामू, ओ रामू, देखूं इस कमरे में भी देख लूं, ये ससुराल से आया नौकर मालिक से कम नहीं है। रामू, ए रामू, रामू, रामू उठ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो लौट मांगी।
1: कौन है मैं? साहब है।
2: अरे का साहब, हम इतना अच्छा सपना देखत रहे कि कछु पूछो नहीं।
0: अच्छा सपना देख रहा था, वहाँ घर के काम कौन करेगा, तेरा बाप?
2: अरे अरे साहब देखो, हमारे बाप तक मत पहुँचियो।
3: अरे हमारा सपना पूरा होवे में तनक सी कसर हती कि आपने उठा दो।
2: अरे ऐसो कौन सो पहाड़ टूट पड़ो जो आपने हमको डिस्टर्ब कर दो।
3: हमारी चाय कितने हैं?
0: अरे अरे चाय के बच्चे 9 बज गए हैं, 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और तू अभी चाय की रट लगा रहा है। अरे तू यहाँ चाय पीने के लिए नहीं, काम करने के लिए ससुराल से आया है।
2: अरे तनक तनक गम खाओ साहब, जे गुस्सा वुस्सा कौन और पे दिखाई हो।
3: अरे हमारा भी एक रूटीन है, अपन उसी पे चलते हैं।
2: और देखो साहब, जैसे दीदी को इतने इम्पोर्टेंस मिलते हैं, वैसे अपन को भी इम्पोर्टेंस चाहिए। और हमको गुस्सा मत दिलवाइयो, नहीं तो जीरो आपको घर और हम चले अपने घर।
0: हे भगवान, ये कहां से मुसीबत आ गई। वो क्या कहते हैं, बुलाया था काम करने के लिए और ये तो मर्दुआ।
2: कौन आ गई, कौन आ गई साहब, और कितने हैं?
3: अच्छा तो आप सामने वाले फ्लैट में उन मैम साहब को घूरत रहे।
2: अब तो दीदी को सारी बातें बताना पड़ेंगी। दीदी,
0: बाप रे, क्यों हमारी एयर कंडीशन्ड जिंदगी में हीटर जला रहा है मेरे बाप। अच्छा अब जल्दी से मेरे लिए मूली के पराठे और टमाटर की सब्जी बना दे।
2: अरे पहले हमको चाय, फिर एक गिलास दूध और उके बाद आधा किलो गाजर का हलवा का प्रबंध करो।
0: तू ये मत भूल कि तू यहाँ काम करने आया है, करवाने नहीं। और हाँ, मेरे कहे अनुसार अगर तूने काम नहीं किया ना, तो बांध अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से।
3: दीदी,
0: अरे चुप चुप रे, मेरे घर में आग लगाएगा क्या?
4: अरे क्या हुआ?
3: अरे दीदी, हमारी बेइज्जती करवानी हती तो हमें इतने काय बुलाओ।
4: अरे रामू, तू तो पसीने से तर बतर हो रहा है, क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? रामू तू बिल्कुल मत घबरा, बता क्या बात है।
0: अरे रामा, तुम कहाँ इस बहुरूपिये के चक्कर में पड़ गई?
3: देखो दीदी,
0: ये तो मेरे घर में

0: मेरे ऊपर ही क्या कहते हैं वो पेट्रोल डालकर लाइटर लगा रहा है।
1: आप चुप रहिए जी, आप रामू पर बेकार ही दोष लगा रहे हो। ये तो बहुत वफादार है, इसीलिए तो पापा ने इसे मेरे साथ भेजा है। इसने जरूर आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा देखा सुना होगा। रामू तू बता मुझे क्या बात है।
0: नहीं नहीं रामा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। रामू तो भोला सा सीधा सा प्यारा सा बच्चा है। हाँ बेटा रामू, पहले तेरे को चाय चाहिए?
2: हाँ साहब।
0: ओह, फिर दूध का गिलास चाहिए?
2: हाँ साहब।
0: और इसके बाद आधा किलो गाजर का हलवा?
2: वाह साहब वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत ही गजब की
0: है ना।
2: सच्ची साहब, अगर हम लोगों को आप जैसे मालिक मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी तर जाए।
0: रमा सुन लिया ना तुमने? तो अब जल्दी से रामू के लिए सब चीजें तैयार करके ले आओ।
1: मैं?
2: साहब ये चीजें तो हमने दीदी के हाथ की आपकी ससुराल में बहुत खाई हैं। सो हमाओ कैवो को मतलब ये हतो कि गर जे सारी चीजें आप बना ला तो हम दोनों चीजों का काम टीशन करके जे बता देत कि कौन अच्छो बनात है।
0: वाह, वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए पर तुम जैसे नमूनों को छोड़ गए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए।
2: वो अंग्रेज हो या चंगेज हो हमें का फर्क पड़त, अपन को तो गुठली से मतलब है, आम से काले वो देवो।
1: वाह रामू वाह, तेरा भी क्या दिमाग चलता है, वो क्या कहते हैं ना बिल्कुल सुपर फास्फेट की तरह। और हाँ सुन लीजिए आप भी, मैं भी ये सारी चीजें खाऊंगी।
0: हाँ हाँ ठीक है, लेकिन महारानी जी उसे सुपर फास्फेट नहीं सुपर फास्ट कहते हैं।
1: हाँ हाँ वही वही।
2: देखो देखो दीदी, साफ बात बदलवे के लाने ऐसी बातें कर रहे हैं।
1: हाँ जी, अब आप भी ये सब फालतू बातें छोड़िए और जल्दी से चलिए चलिए ये सब चीजें बना के लाइए।
0: भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं, ससुराल से नौकर क्यों लाया। जब मुसल में सर दिया है तो ओखली से क्या डरना।
2: जे का कह रहे साहब, बाप को ऐसे बोलते हैं, जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना।
0: अच्छा मालक, अब आप मालक लोग जाइए, तब तक हम आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना दें। अरे ये क्या मुसीबत है, एक घंटे से मैं टाई और सूट ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। कहाँ चले गए मेरे टाई और सूट? जब से ये रामू का बच्चा आया है रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देता है। रमा, ओ रमा, अरे रामू, रामू के बच्चे
2: आते आते साहब आते। देखो साहब, अपन को कछु भी बोलो आप, कौन फर्क नहीं पड़त। हाँ, पर दीदी को नाम इज्जत से लेवे पर भारत की नारी की इज्जत बढ़त है, समझे।
0: अच्छा तो अब आप मुझे शिक्षा देने लगे हैं। अरे तुझे पता नहीं है क्या रमा मेरी बीबी है और तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन होता है।
2: ऐसो है साहब, रहीमन जी कह गए हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, दूसर को शीतल करे आपऊ शीतल होए।
1: वाह रामू, तू कितना ज्ञानी कितना विज्ञानी है।
2: वो तो बचपन से हूँ दीदी।
1: देखो जी, सीखो सीखो इससे कुछ। एक आप हैं कि सुबह हुई नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कभी रामू पर तो कभी मुझ पर।
0: क्या चिल्लाना, अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो दिन रात भों भों भों करता रहूं।
1: आप कुछ भी बोलो पर रामू है बहुत होशियार।
0: हाँ, होशियार है तभी तो भुगत रहा हूँ।
1: क्या भुगत रहे हो, अरे क्या भुगत रहे हो, आपके यहाँ तो कोई नौकर मिल ही नहीं रहा था, तभी तो मेरे पापा जी ने इसे यहाँ भेजा। एक तो बेचारा दिन रात काम में जुटा रहता है, फिर भी आप उसे कोसते रहते हो।
2: देखो दीदी, साहब को हम और हमारा काम दो पसंद नहीं है, सो अब हम इतने से जाते हैं। तोरे जाने की खुशी और दिल उदास
0: जो,
2: है।
0: जो, जो। उब लगा रहा है कच्ची पक्की अपनी दीदी को।
2: ऐसी बात नहीं है साहब, अपन कोई चीज कच्ची नहीं बनाते, अपन तो एकदम पक्की बनाते हैं।
0: हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, अब तो बता दो कि मेरा सूट और मेरी टाई कहाँ है। अरे आज ऑफिस में मीटिंग है।
1: वो ऐसा है कि मैंने आपका सूट आज के लिए रामू को दे दिया है। वो आज सरिता के यहाँ किटी पार्टी है ना, और उसमें मुझे गुलाब जामुन बना के ले जाना है, और आपके पास तो समय है नहीं। मैंने सोचा कि रास्ते में से ही 10 किलो गुलाब जामुन खरीद लूंगी और उन्हें ले जाने के लिए रामू को साथ में ले लूंगी। अब रामू हमारे यहाँ का यानी कि आपके ससुराल का नौकर ठहरा, यानी इज्जत का सवाल आ गया ना, किसी से कम न पड़े वो वहाँ पर। इसीलिए मैंने उसे सूट और टाई पहना दिया। क्यों जी, कैसी रही मेरी प्लानिंग?
0: वाह, क्या प्लानिंग है। तुम अपनी प्लानिंग को करो और मेरी इज्जत का फालूदा बनाती रहो। अरे ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे, एक सूट टाई भी नहीं है मेरे पास।
2: लो साहब, इतनी सी बात को परेशान हो रहे हैं आप। अरे कह दियो कि घर से सूट पहन के निकले रहते, पर रास्ते में ससुरी बिल्ली कन्नी काट गई, तो वापस घर जाकर सूट उतार के आना पड़ो।
0: अबे अबे क्या मतलब बिल्ली कन्नी काट गई?
2: अरे का साहब, इतनी भी बात नहीं समझता आप। हम आओ कैबो को मतलब जे हतो कि आप एक गटर के पास से निकल रहे थे कि अचानक आपको पैर फिसल गओ तो सूट गंदा होगा।
1: वाह वाह, क्या दिमाग पाया है तूने रामू।
2: थैंक यू दीदी।
1: सच रामू, अब तो पूरी जिंदगी तू इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना।
0: अच्छा रामू, अरे ये एक मिनट भी यहाँ दिखो तो मैं इसका खून पी जाऊंगा।
2: देखो साहब, अब आप खून पियो चाहे पानी पियो, मैं तो सूट पहन के आता हूँ। और दीदी आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ।
1: और हाँ, आप भी सुन लीजिए, शाम को सरिता के घर होते हुए आना, शाम का खाना उसी के घर है।
0: यानी कि बेइज्जती पर बेइज्जती। खैर बेटा दिनेश, अब ससुराल का नौकर पाला है तो सहन तो करना ही पड़ेगा।
3: इधर को आता है, इधर भीख मांगने वाले को अलाउ नहीं है, अंदर जाना मनाई। हट,
0: अरे
3: हट।
0: ए, ए, ए, ए, ए, मैं तुझे भीख मांगने वाला दिखता हूँ?
3: अरे ये बहिष्कारता है, यानी आजकल का भिखारी भी बहिष्कारता है। अरे बाबा, किसी के माथे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो भिखारी है या नहीं, अपन उसके कपड़ों से चाल ढाल से पता चलता है कि वो कौन है।
0: अरे ओ चौकीदार भैया, जरा अंदर जाकर सरिता मैम साहब के फ्लैट में खबर करो कि रमा के साहब आए हैं।
3: अच्छा अच्छा, तुम भिखारी के साथ साथ पागल भी हो। अभी पागल खाने फोन करके मैं कहता है कि एक पागल खाने से पागल भाग कर आया इधर को। अरे रमा मैम साहब के साहब तो सुबह से किटी पार्टी में आए।
0: अरे वो हमारा नौकर है रामू, रमा का पति मैं हूँ मैं।
3: वाह साहब जी, अच्छा मजाक करता है। पन रुको, अपन साहब को बुला के लाता है, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। रुकना, बाग मत जाना, समझे, इधर ही रुक।
1: अरे जी आप।
0: हाँ मैं तुम्हारा नौकर।
1: अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना।
0: अंदर क्या आऊँ, पहले इस चौकीदार को बताओ कि तुम्हारा पति कौन है, मैं या ये ससुराल का नौकर।
3: अरे साहब, अपुन साहब समझ गया। अच्छा ससुराल का नौकर, तभी तो वो लाड साहब और आप लोड साहब दिखते हैं। लेकिन मैम साहब, इसमें अपुन का दोष नहीं है, आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड की तरह रखिए ना।
1: दिनेश मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बेवकूफी के कारण हुआ। मैंने रामू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया था।
0: आज तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी, एक मामूली से चौकीदार ने मुझे बेइज्जत किया।
1: नहीं दिनेश, ऐसा मत बोलो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको अपमानित करने या करवाने का, जो हुआ वो मेरी नादानी थी। मैं भूल गई थी कि हर आदमी की अपनी हैसियत होती है, एक दर्जा होता है, नौकर नौकर होता है, पति पति होता है। मुझे माफ कर दो दिनेश।
0: नहीं
1: दिनेश, मैं बहुत शर्मिंदा।
0: बिल्कुल नहीं,
1: प्लीज दिनेश,
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: प्लीज दिनेश, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज।
0: तुम शर्मिंदा हो?
1: हाँ।
0: हो?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, देर आए दुरुस्त आए।
1: इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो चलो, अब यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलते हैं।
0: चलो। एक मिनट बहादुर, जरा ये बता मैम साहब के साथ ससुराल का नौकर अच्छा लगता है या मैं?
4: दिनेश।

ससुराल का नौकर, अभी आपने संतोष श्रीवास्तव की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे राकेश ढोंडियाल। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गैंगस्टर फिल्म के गीत से, जिसे गाया है केके ने, संगीत प्रीतम का, बोल सैयद कादरी के।

बीजेपी सुनिए मोहम्मद इरफान, अरिजीत और सैम भट्ट को फिल्म मर्डर 2 में सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मिथुन ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और वापस लौटते हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए मुस्तफा जैद को फिल्म आवारापन में। सैयद कादरी ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म सुपर 30 में। अजय अतुल ने संगीत दिया है और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश राहत फतेह अली खां और सुजैन टिमालो की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वीर। गुलजार के लिखे गीत की धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
1: श्रोते आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक

से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित

0: द हेल्प ऑफ दिस स्कीम आई स्टार्ट ऑन माई
1: इस
0: ड्रीम
1: योजना
0: एज
1: की
0: अ फ्रेंड
1: सहायता
0: एंड
1: से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। बोल गुलजार के थे संगीत आरडी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की। मेरा

0: राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं।

0: आवारा हूँ।
1: राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुँच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहाँ शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहाँ से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में।

0: कहें।
1: राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर, वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल।

फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आग कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु कर्मरकर। राधु कर्मरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों, इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

0: अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बावरे ने।
1: मुझे सच सच बता दो
2: क्या?
1: कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच

ये छह की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म आवारा का।

और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थी।

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा।

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की 3 फिल्में आईं, धुन, पापी और आह।

आह जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आह फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आह ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया। लेकिन सबको सिखा गया, शो मस्ट गो ऑन।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: श्रोताओं, ये विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, अब सुनिए देशभक्ति कार्यक्रम। ये देश आज भी याद करता है और हमेशा याद रखेगा तुम्हारी कुर्बानी, उन मिट्टी के बेटों की जो कभी वापस नहीं आए, छोड़ गए अपने पीछे अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी सुहागन पत्नी को, अपने प्यारे बच्चे को, क्योंकि उन्हें फिक्र थी पूरे हिंदुस्तान की।

हाँ, मेरी एक माँ है, पर क्या तुम्हें पता है, हमारी एक और माँ है, हमारी धरती, और उसने भी अपनी गोद में हमें खिलाया है, अपने बचपन में प्यारी यादें दी हैं, और एक दिन वापिस अपने आंचल में हमें छुपा लेगी।

श्रोताओं, आज हम ये देशभक्ति कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज हिमाचल ने अपना एक बहादुर जवान खो दिया है? जी हाँ, कार हादसे में शौर्य चक्र विजेता मरीन कमांडो की आज मौत हो गई है। छुट्टी लेकर अपने घर आए थे, उनका 4 साल का एक बेटा है। जी हाँ, ज्वालामुखी के जो है जवान 32 वर्षीय अमित राणा की आज एक हादसे में मौत हो गई है। उनकी कार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। तो देखिए, जवान जो हैं शौर्य चक्र विजेता जवान थे, और ये कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन धन्ना और ऑपरेशन शोक बाबा के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन भी किया था। आज का अगला गीत हमारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिवार के लिए।

हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि कोई है जो हमारी देश की सरहदों के लिए बैठा है, हमारी सुरक्षा के लिए। ये गीत उन सभी शहीदों के परिवारों के लिए।

तो कभी कर दिया करो उन्हें कोई मैसेज या कोई बात उनसे कर लिया करो या कोई पत्र लिख दिया करो, क्योंकि उन्हें भी आस होती है

श्रोताओं, भी आप देशभक्ति संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हुए, आप सुनिए चांदनी रातें कार्यक्रम। श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के रोमांटिक फिल्मी गीतों के सुनहरे सफर चांदनी रातें कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त अक्षय कुमार। तो जी, शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सुनहरे से सफर के इस गीत के साथ। पहली बार ये दिल बेकरार हुआ है। सुनो, तुमने कोई जादू किया है क्या? क्या तुम कोई जादूगर हो? हाँ, जानता हूं कि तुम जादूगर नहीं हो, पर कुछ तो खास है तुम्हें।

सुनो, सच कहूँ तुम्हारे बिना ये दिल नहीं लगता। अब क्या करूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ तुम्हारे बिना। तुम मानते हो ना कि तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, पर उन साथ में भी तुम्हारी कमी तो हमेशा खलेगी ना।

हाँ, माना कि तुम नहीं हुआ मेरे साथ, पर ज़रा देखो तो, ये मेरी महफिल आज भी हज़िन है। पर सच कहूँ तो इसमें भी तुम्हारा ज़िक्र है और हमेशा रहेगा।

कि तेरी बाहों के दरमियान जो सुकून है ना, उसको मैं बयां नहीं कर सकता। पर सच कहूँ उसमें तेरी मेरे लिए परवाह और फिक्र दिखती है मुझे, और तेरी उस फिक्र के लिए वादा है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा हमेशा, क्योंकि तूने कहा था ना कि एक दफ़ा फिर से मिलेंगे हम। बस इंतज़ार है मुझे उस पल का।

सुनो, तुम्हें उस फलक पे ले चलता हूँ, उन सितारों के आंचल में, चांदने की आहोश में। तुम अक्सर कहती थी ना कि तुम्हें चांदनी पसंद है, तो चलो मेरे संग उन सितारों को देखने और चांद के आहोश में चलते हैं।

जी हाँ श्रोता, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और जी हाँ, अपने दिलों में मोहब्बत हमेशा जिंदा रखिए। आज का अचानक कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपने रेडी दोस्त अजय कुमार के साथ।

श्रोताओं, भी आप चैनल कार्यक्रम सुन रहे थे। रात के 11 बजने को आपसे थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत

0: अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता रात्रि 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।